यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि। तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 40 सेकेंड्स हुए हैं। अब आकाशवाणी शिवपुरी से प्रसारण आरंभ होता

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, हम अपनी मातृभूमि को सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और देश की वंदना।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देशगान। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। पंडित रतन मोहन शर्मा की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं श्री राम स्तुति। लीजिए।

पंडित रतन मोहन शर्मा और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये श्री राम स्तुति। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये भजन। लीजिए

हरिहरण और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। श्रोताओ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनुपमा देशपांडे और साथियों की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये भजन। लीजिए

0: अनुपमा देशपांडे और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये भजन। और श्रोताओं, इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम चिंतन का, और चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है फल की चाह। चिंतक है स्वामी आत्मानंद, लीजिए सुनिए।
1: गीता में निष्काम कर्म की बड़ी महिमा बताई गई है। निष्काम कर्म का महत्व केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से ही नहीं है, प्रत्युत हमारे भौतिक जीवन में भी इसकी महत्ता निर्विवाद है। भौतिक जीवन में निष्कामता हमारे कर्मों को पूर्णता प्रदान करती है और उन्हें अधिक से अधिक फलप्रसू बनाती है। इसका आध्यात्मिक पक्ष कर्म में निहित स्वाभाविक विष से हमारी रक्षा करता है और हमें असफलता के समय टूटने से बचाता है। इसके साथ ही वह सफलता के उन्माद का मोचन भी करता है। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों पक्षों को मिलाकर ही निष्काम कर्म के सिद्धांत का संपूर्ण अर्थ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म का भौतिक पक्ष यह कहता है कि कर्म के फल की अतिरिक्त चाह न रखो। कर्म फल की चाह तो स्वाभाविक है। जब मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसके फल की कामना से प्रेरित होकर ही करता है, पर गीता कहती है कि चाह की तीव्रता इतनी न कर लो कि जिससे कर्म करने की शक्ति पर बाधा पड़े। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है। जो ही पुस्तक खोलकर वह पढ़ने बैठता है, उसकी आंखों के सामने परीक्षा फल नाचने लगता है। सोचता है, यदि अमुक श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊंगा तो विदेश पढ़ने के लिए जाऊंगा। वह कल्पना के महल खड़ा करता है और इस व्यर्थ की फल चिंता में उसका अधिकांश समय नष्ट हो जाता है। यही समय अगर वह पढ़ाई में लगा देता तो उसका कर्म अधिक सक्षम और पूर्ण बनता और उस कर्म का फल भी उसके लिए अधिक वांछित होता। यही बात प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है। हम कर्म करने में अधिक ध्यान न देकर उससे प्राप्त होने वाले फल के चिंतन में व्यर्थ समय गंवाया करते हैं। अतः निष्काम कर्मरूपी सिद्धांत का भौतिक पक्ष कहता है कि पूरी शक्ति के साथ कर्म करते चलो। उसका उचित फल तो कर्म के न्याय के अनुसार अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा ही। व्यर्थ के फल चिंतन में समय न गंवाओ। फल के बारे में सोचते रहने से मन भटक जाता है, हम अपना पूरा मन कार्य में नहीं लगा पाते। इसलिए वह फल की चाह करने से हमें रोकता है। निष्काम कर्म का आध्यात्मिक पक्ष यह कहता है कि ईश्वर समर्पित बुद्धि से जीवन के सब कर्म करो, अर्थात कर्म तो करो और पूरी शक्ति के साथ करो, पर उसका फल ईश्वर पर छोड़ दो। यह दृष्टिकोण हमारी रक्षा करता है। मान लीजिए किसी ने पूरे मन प्राण के साथ एक कर्म किया और अंत में इतने प्रयत्न के बावजूद उसे असफलता हाथ लगी। जो व्यक्ति निष्काम कर्म का विश्वासी नहीं है उसकी क्या दशा होगी? वह टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वह समाज को दोष देगा, वह हताश हो जाएगा और संभव है जीवन से भी निराश हो जाए। भौतिकवादी लोगों के जीवन में हम असफलता जन्य या निराशा प्रायः देखा करते हैं। एक बार असफल होने पर वे पुनः खड़े होने में समर्थ नहीं हो पाते। अब उनको देखें जो निष्काम कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों के फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति असफल होता है तो वह सोचता है कि ईश्वर इच्छा से हुआ। वह संतोष कर लेता है कि इस असफलता से ईश्वर उसका मंगल ही करेंगे और इस प्रकार अपने आप को टूटने से बचाकर वह ईश्वर पर अधिक विश्वास के साथ दुगने उत्साह से अपने कार्य में लग जाता है। जब उसे सफलता मिलती है तो उसे भी वह ईश्वर की कृपा समझता है और अपने आप को एक निमित्र मात्र मानता है। दोनों ही स्थितियों में कर्म का लेप उस पर नहीं लग पाता। उसका समर्पण भाव कर्म के विष से उसकी रक्षा करता है। यहां कुछ लोग यह आपत्ति उठा सकते हैं कि यह तो पलायनवाद हुआ, ईश्वर को फल समर्पित करना तो मात्र एक कल्पना है। इसका उत्तर यह है कि आखिर जीवन भी तो एक कल्पना है। यदि कोई कल्पना हमें टूटने से बचाती है तो उसका सहारा हम क्यों न लें? अक्षांश और देशांश की रेखाएं कोई प्राकृतिक रेखाएं तो नहीं है, फिर भी उनके सहारे हम हवाई जहाज और पानी के जहाज से यात्रा करके गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। फिर ईश्वर तो कल्पना की उपज है नहीं, वह जीवन का शाश्वत सत्य है, वह अखिल शक्ति का स्रोत है। निष्काम कर्म जहां हमारे भौतिक जीवन को समृद्ध करता है, वहां हमें आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत बनाता है।
0: फल की चाह। श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे स्वामी आत्मानंद। और श्रोताओं, चिंतन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। समय है श्री रामचरित मानस पाठ का, लीजिए सुनिए। स्वर दे रही हैं अनुराधा।

पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, इस प्रकार काक भुशुंडी ने सविस्तार वो कथा कही जो मैंने तुम्हें सुनाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, स्वर दे रही थी अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कृषि समय के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गर्मियों में दुधारू पशुओं की उचित देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर एसपी सिंह से जानकारी लीजिए, सुनिए।
1: नमस्कार सभी किसान भाइयों को। और गर्मियों का जब प्रवेश होता है तो पशुधन जो है हमारा इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव असर जो पड़ता है जो खासकर जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। तो दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन लगातार और बढ़िया बना रहे, जो उसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमारा दुधारू पशु चाहे गाय है चाहे भैंस है क्षमता के अनुसार भरपूर दुग्ध उत्पादन करता रहे। आप देखेंगे गर्मी और बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो लू का प्रकोप है लू का प्रकोप भी होगा, और ऐसे मौसम में दुग्ध उत्पादन और बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका प्रबंधन इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो दुधारू पशुओं का खासकर बदलते गर्मियों के मौसम में सबसे पहला जो प्रबंधन है वो आहार व्यवस्था का प्रबंधन होना चाहिए, आहार प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आहार एक महत्वपूर्ण घटक होता है दुधारू पशुओं के लिए, और दुधारू पशुओं की खिलाई पिलाई पर ही 70% खर्चा होता है। इसलिए आहार का हम अच्छी तरीके से प्रबंधन करके गर्मियों में भी उनसे उनकी क्षमता के अनुरूप अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि जो हमारे दुधारू पशु हैं बदल रहा है मौसम बदल रहा है तो उन्हें आगे भी संतुलित आहार अवश्य देते रहें। संतुलित आहार जब देंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छा लाभ मिलेगा। और संतुलित आहार में सबसे मोटी मोटी बात यह है कि जो हम आहार बनाते हैं और जो आहार खिलाते हैं उसमें रातव, जिसमें आपके गेहूँ जौ जई का रातव हो वो

0: किलोग्राम हो, इसके अलावा खल हो हमारे पास, चाहे मूंगफली की खल हो चाहे सरसों की खल हो, खल 35 किलोग्राम। चोकर, चोकर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रोटीन की पूर्ति करते हैं और चोकर में दालों चने चुनी के छिलके ये आते हैं, ये 20 किलोग्राम। इसके अलावा दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं, वो विटामिन्स और खनिज लवण। तो ये विटामिन्स और खनिज लवण में ये 2 किलोग्राम अलग से चाहिए और 3 किलोग्राम साधारण नमक। इस तरीके से हम देखेंगे 40, 35, 20, 3 और 2, तो ये 100 किलोग्राम हमारा संतुलित आहार बन के तैयार हो जाता है। इस सारे चीज़ों को हम पिसवाकर एक जगह मिला देंगे तो ये 100 किलोग्राम संतुलित आहार हमारा बन जाएगा। और इसको हम अपने जो पशु हैं इस मौसम में उनको दुग्ध उत्पादन की क्षमता के आधार पर खिलाएं। जो हमारी भैंस है उसको 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम संतुलित आहार, यदि गाय है तो गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार। तो ये एक अनुपात है। यदि माना कि कोई भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको 4 किलोग्राम संतुलित आहार दूध उत्पादन की चाहिए। इसके अलावा मेंटेनेंस राशन के रूप में यानी जीवन रक्षक आहार के रूप में 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त उसको और संतुलित आहार चाहिए। तो एक 10 लीटर दूध देने वाली भैंस को लगभग 5.5 किलोग्राम संतुलित आहार 24 घंटे के अंतर दोनों टाइम में जो सानी लगा के खिलाते हैं उसमें देना जरूरी है। गाय को थोड़ा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि गाय के दूध में थोड़े पानी ज़्यादा होता है और वसा कम होती है और भैंस के दूध में वसा ज़्यादा होती है, इसलिए भैंस को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो उसको थोड़ा ज़्यादा हमें जो है संतुलित आहार देना पड़ता है। और क्योंकि इस समय विशेष रूप से एक सावधानी ये रखनी है कि जो भूसा आता है, क्योंकि ताजी भूसा होता है, तो भूसा जो है उसको एक डायरेक्ट हम अपने ताजी भूसे को एकदम डायरेक्ट अपने पशुओं को न खिलाएं। सुबह शाम जो भूसे से सानी लगा रहे हैं उस भूसे को हल्का सा जैसे डलिया में ले रहे हैं तो डलिया भिगो लें, पानी को भूसे को एक बार पूरा भिगो के, या पानी भरा हुआ टंकी में तो टंकी में डलिया डुबो के ऊपर निकाल लें, तो जो भूसे की गर्मी है वो गर्मी हल्का शांत हो जाती है, कम हो जाती है, और उस भूसे में सानी लगाए खिलाएंगे तो पशु चाव से भी खाएगा और उसकी जो गर्मी का प्रकोप है भूसे के माध्यम से वो गर्मी का प्रकोप नहीं होगा। वरना क्या होता है, जब भूसा गर्म होता है तो पशु जो है पतले दस्त भी उसको कर देता है, तो ये उससे बचाव होगा। और मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हम आहार प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो इसमें संतुलित हरे चारे के आहार प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन लेना, ज्यादा दूध उत्पादन लेना है तो उसको हरे चारे की भरपूर मात्रा देनी होगी। इसके अलावा दूसरी चीज जो व्यवस्था है हमारे जो गर्मियों में दुधारू पशुओं को, क्योंकि हम जो चारा दाना खिलाते हैं और गर्मी में हम जो है पशुओं को पानी का जो है प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि संतुलित आहार में नमक का समावेश जरूर करें। जब पशु पर्याप्त मात्रा में नमक खाता है तो उसकी प्यास बढ़ती है, तो इस समय दिन में कम से कम जो है 3 से 4 बार स्वच्छ और ताजी पानी अपने दुधारू पशुओं को 3 से 4 बार जरूर पानी पिलाएं। भले ही पशु नहीं पीता पर हमें 3 से 4 बार पानी उसको दिखाना है। एक तो पानी स्वच्छ हो और ताजी हो, ये पानी हम पिलाएं, तो जो हमारे ट्यूबवेल का है या हमारे जो हैंडपम्प का है या जो हमारे कुएं का पानी है उसको आप दिन में 3 से 4 बार आप पिलाएंगे तो भरपूर जब पानी पिएगा तो तब भी दूध उत्पादन होगा। और इससे प्रभाव क्या होगा कि जब पशु पर्याप्त मात्रा में पानी पिएगा तो जो लू का प्रकोप है, गर्मी का प्रकोप है, वो उससे उसका जो बचाव होगा।
1: गर्मियों में दुधारू पशुओं की उचित देखभाल, श्रोताओं इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एसपी सिंह से जानकारी। और इसके साथ ही कृषि समय के कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं समय है कार्यक्रम विवरण का, जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदोस्ता हमारा। आज सुबह 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिवपुरी का सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आज सुबह 9 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में हम आपको अनंत सिंह रावत और बालकृष्ण के गाए लोकगीत सुनवाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर। आज सुबह 10:05 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत और कलाकार होंगे जगजीत सिंह। आज सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं आज शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गर्मियों में पानी की बचत क्यों और कैसे और परिवार कल्याण की आधुनिक अवधारणा, इन दो विषयों पर बातचीत सुनी जा सकती है। आज शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय बांस मिशन और फसल विविधीकरण जरूरी क्यों, इन दो विषयों पर बातचीत सुनी जा सकती है। इसके अलावा आज हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, विषय होगा भेड़ बकरियों में होने वाली बीमारी और रोकथाम। विषय एक बार फिर सुन लीजिए, भेड़ बकरियों में होने वाली बीमारी और रोकथाम। इस विषय पर डॉक्टर चंदन सिंह बाथम से श्री मोहन सिंह यादव की बातचीत। तो श्रोताओं, यह रूपरेखा हुई हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब उन कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें जिनका हम अनुप्रसारण करेंगे। श्रोताओं, आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आज सुबह 10:00। आज दिन में 1:00 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम लोक संगीत। दिन में 1:30 पर, 1:45 पर सुगम संगीत, और शाम 5:00 कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, महिला कार्यक्रम लोक संगीत, सुगम संगीत और कार्यक्रम युववाणी, यह आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। आज शाम 6:00 से लेकर शाम 6:30 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार

0: एएम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य, आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतं कृषि

0: क्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतमस्ति तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना सप्तवादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं षड्वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य षड् प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरंगतः तीव्रतापतरंगस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि

0: 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए, राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदोस्ता हमारा। सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काक्षिद् दुख भाग भवेत। श्रोताओं, 18 पुराणों के रचयिता महर्षि व्यास परोपकार को मनुष्य का आत्मधर्म स्वीकार करते हैं। मध्यकाल में भारतीय संस्कृति को जिस द्वंद और टकराहट का सामना करना पड़ा, उससे सांस्कृतिक परंपरा के नवजागरण से समायोजन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। साहित्यिक संतों ने रूढ़ियों और अंधविश्वासों से परे हटकर सहज मानव धर्म की स्थापना पर जोर दिया। गोस्वामी तुलसीदास उपास्य देव की प्रार्थना में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोग पानी। वहीं संत कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। श्रोताओ, कुछ इस तरह के सांस्कृतिक नारे बुलंद किए गए। इसी प्रकार सूफी संत कवि जायसी की वाणी है, उन्होंने कहा कि तीनह लोक 14 खंड सबे परे मोह सूझ, प्रेम छाड़ नहीं लोन कहूं जो देखा मन बूझ। और सिख धर्म के उन्नायक संत गुरु नानक देव ने उपदेश दिया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्या कौन भले कौन मंदे। श्रोताओं, इन सांस्कृतिक विशेषताओं और संत महात्माओं के उपदेशों के बावजूद आज हमें उन कारकों पर भी विचार करना चाहिए जिसके चलते भारत के सामाजिक जीवन में व्यापक अंतर्विरोध घनीभूत हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से यदि हम देखें तो मानवीय स्वार्थ, ऊंच नीच और जात पात की भावना, रूढ़ियां, अंधविश्वास, ये मुख्य रूप से हैं। श्रोताओं, यदि हम ब्रिटिश सत्ता और संस्कृति के संपूर्ण वर्चस्व की बात करें तो उसने भारतीय समाज के पाश्चात्य जीवन दर्शन का एक मॉडल प्रदान किया है और संस्कृति समन्वय आत्मसात परिष्कार की प्रक्रिया है। स्वच्छंद जीवन दर्शन संस्कृति के इस संदर्भ को ग्रहण करके तर्कसंगत, सार्थक और उपयोगी बनाया जा सकता है। सांस्कृतिक उत्थान की भावना से विश्व कल्याण संभव है। मानव जाति के सभी आदर्श इसी संस्कृति में अंतर्निहित है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ में विंसेंट स्मिथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी। विंसेंट स्मिथ अर्ली और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत में विभिन्नताओं के मध्य भारत के निवासियों ने एक विशेष प्रकार की संस्कृति और समानता का विकास कर लिया है। यह दुनिया की अन्य संस्कृतियों से बिल्कुल अलग है। इस संस्कृति और सभ्यता को हिंदुत्व कहते हैं। सांस्कृतिक एकता के इन कारणों के अतिरिक्त भारतीयों को जो विभिन्न धार्मिक समूहों, जातियों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के रूप में विघटित हैं, एकता के सूत्र में पिरोने वाले अस्तित्व के वे आवश्यक कारक हैं और जो उनके धार्मिक और आर्थिक विभेदों से ऊपर उठे हुए हैं। अवेद ज्ञान, मानवीय समत्व, आत्म प्रसार, सांस्कृतिक उल्लास, अजय आस्था भारतीय परंपरा के जीवंत लक्षण है। इसकी गूंज अद्यतन प्रतिध्वनित है। भारतीयता आधुनिकता का स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में यही प्रेरक आदर्श वाक्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि सारा भारत मेरा शरीर है, मैं मूर्तिमान भारत हूं। मेरे लिए सच्ची ईश्वर भक्ति तो देश की सेवा और सच्चे भगवान दरिद्र नारायण है। निसंदेह विश्व की भावी एकता की भूमिका भारत की सामाजिक संस्कृति में है। जिस प्रकार भारत ने किसी भी धर्म का दलन किए बिना अपने यहां धार्मिक एकता को स्थापित किया, जैसे भारत ने किसी भी जाति की विशेषता को नष्ट किए बिना सभी जातियों को एक सांस्कृतिक सूत्र में आबद्ध किया, जैसे भारत ने किसी भी भाषा की गरिमा को घटाए बिना संस्कृत को अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की भाषा बनाकर देश की भाषागत कठिनाइयों को समाधान निकाला, और कुछ उसी प्रकार हम सभी देशों और सभी जातियों और सभी विचारों के बीच एकता स्थापित कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच कृषि, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी, 1 जून से होंगे तबादले। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी अब 28 मई तक होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों के आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया, जिससे कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025 से 2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य उन्मुखी रोडमैप देखी। श्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर विकास करने और मिलकर उत्पादन करने के नए रास्ते खोल दिए हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी समझौते, भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देशों के रिश्ते केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि लोगों और समाजों की आपसी जुड़ाव से भी

0: मजबूत होते हैं। सुश्री मेलोनी कल रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और इटली, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार ग्रहण करते हुए इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। श्री मोदी को ये मेडल एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्क्यू ने प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अट्यूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और उद्यम आधारित विकास पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और दुनिया के सबसे जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30,055 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी गयी। बुजुर्गो, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़, किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अगले वर्ष उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा। इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा।
3: 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था। मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ। हमारी अपनी किसानों हितैषी सरकार है। किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं।
0: आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आज के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार।

संक्षेप में, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने कल ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का जायजा लिया। खंडवा के खालवा विकासखंड की ग्राम रोशनी में कल जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने 1,36,00,000 रूपये लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक ई केवाईसी अभियान संचालित किया जा रहा है। झाबुआ कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं, आगामी प्रस्तावों और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा बैठक ली। मंडला में जिला पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का विभाग द्वारा पंचायतों में प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। खरगोन जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में दत्तक शिशुगृह शाजापुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:20:40 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए ये गीत।

नागिन फिल्म में भी आप सुन रहे थे लता जी के साथ महेंद्र कपूर को। गीत वर्मा मलिक का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में वर्मा मलिक का लिखा एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज लता जी की है, फिल्म का नाम है जानी दुश्मन। लीजिए सुनिए।

0: जाने दुश्मन फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता जी को। गीत वर्मा मलिक का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। सावन भादो फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं रफी साहब की आवाज में। शब्द रचना वर्मा मलिक की, संगीत सोने को।

जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया चिलका पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला।

मस्ताने ओ जाने जरा नजरें मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके हट तेरा।

प्यासी चटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय

सावन भादो फिल्म में भी आप सुन रहे थे रफी साहब की आवाज में यह गीत, गीत वर्मा मलिक का था, संगीत सोने कौमी का। श्रोताओं, लता जी के साथ किशोर कुमार को का गाया ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीत आनंद बख्शी का है, लीजिए सुनिए।

श्रोताओ, तकनीकी खराबी के कारण ये गीत हम आपको ठीक तरह से नहीं सुनवा सके, इसका हमें खेद है। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन साहब के संगीत निर्देशन में आशा जी का गाया ये गीत। गीत राजा मेहदी अली खान का है और फिल्म का नाम है मेरा साया। लीजिए, सुनिए।

मेरा साया फिल्म में आशा जी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 7:45 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

नमस्कार शिवपुरी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और श्रोताओं, मैं हूं आज आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, एक ऐसी सकारात्मक सोच के साथ अपने श्रोताओं को बताते हैं कि वे अपने जीवन में अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा मन में करें, मस्तिष्क में करें, अपने दिल में करें, और कुछ ऐसी जन जागृति को लेकर या कुछ ऐसी बात मन में उतार कर। और कुछ बातें ऐसी होती हैं श्रोताओं जो आपको जीवन में इंस्पायर्ड करती हैं। इंस्पिरेशन के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ घटनाएं भी जीवन को प्रभावित करती हैं, कोई घटना ऐसी होती है जो आपके जीवन को बदल के रख देती है। और श्रोताओं, हम यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन सुखमय हो, देश समृद्धशाली हो। जब हम अच्छे होंगे तो हमारा देश स्वतः ही अपने आप ही समृद्धशाली होगा। और ये निर्भर करता है हमारे अपने क्रियाकलापों पर, हमारी अपनी सोच पर, अपनी विचारधारा पर। श्रोताओं, हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय विश्व स्तर पर जो एक कोहराम सा मचा हुआ है, एक कुछ देश आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखते हुए आपस में युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, और उसका जो दुष्प्रभाव है वो पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे दुनिया के देशों के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे अगर हम बात ईंधन की करें, पेट्रोलियम पदार्थों की करें, जिसमें गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, अगर हम इनकी बात करें तो कुछ ही देशों में ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, और वहां से उसका उसको ट्रांसमिट किया जाता है अन्य देशों में। और उस ट्रांसमिशन को लेकर जिस रास्ते से वो गुजरते हैं श्रोता, वो भी आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर, अखबारों में और तमाम जगह से ये जानकारी आपको मिली होगी कि हुर्मुज एक ऐसा शब्द है जो आपके दिमाग में अभी भी छाया हुआ होगा। हुर्मुज जल डमरू मध्य, ये एक ऐसा रास्ता है जहां से पेट्रोलियम पदार्थों का आवागमन अन्य देशों की तरफ होता है, और जब वहां पर नाकाबंदी की गई तो पूरे विश्व में खलबली मच गई, ईंधन को लेकर अफरा तफरी मच गई। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 7 सूत्रों में से एक में कहा कि हम पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करें, डीजल का उपयोग कम से कम करें, पेट्रोल का उपयोग कम से कम करें। यदि हम लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं

हैं तो सिंगल की जगह हम एक साथ चार छः लोग एक साथ जा सकते हैं। अगर हम चार गाड़ियों की जगह एक गाड़ी से जाएं, एक वाहन का इस्तेमाल करें तो काफ़ी बचत हो सकती है। तो श्रोताओं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो देश हित में होती हैं, राष्ट्र हित में होती हैं, और हमें वो हित सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं। इसलिए हम अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि जिस तरह से हम अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, वही प्रयास हमें अपने देश हित में, राष्ट्र हित में भी करना चाहिए। श्रोताओं, अब आपको मैं कुछ आवश्यक और जरूरी जानकारी दिए देता हूं। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है, और श्रोताओं, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक हैं माननीय श्री ऋषि गर्ग साहब। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इन्होंने अपने विचारों के आधार पर, अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर जिस संपर्क अभियान को धरातल पर उतारा है वो काबिले तारीफ है। क्या होता है श्रोताओं कि जब विभाग खुद आगे चलकर उपभोक्ता के सामने खड़ा हो जाए और उससे कहे, उपभोक्ता से कहे कि बता भाई तेरी क्या समस्या है, तेरी समस्या के लिए कैंप लगाकर इस भरी धूप में, लू लपट में हम आपके समक्ष हाजिर हैं। श्रोताओं, इस अभियान की शुरुआत प्रबंध संचालक महोदय माननीय श्री ऋषि गर्ग साहब के निर्देशन में अभी हाल ही में 14 मई से शुरू हुई है और यह संपर्क अभियान लगातार जारी है। इस संपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि विभाग उपभोक्ता तक पहुंचे, उपभोक्ता और विभाग के अधिकारियों के बीच का जो समन्वय है वह बना रहना चाहिए, और यही सोच होती है जो देश हित में, राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, और हम जिस इंस्टीट्यूशन के लिए, जिस इंस्टीट्यूट, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसके हित में होती है। हम आपके समक्ष खड़े हैं, वृत्त स्तर पर पूरे क्लस्टर बनाए गए हैं और क्लस्टरों के आधार पर जो रेड जोन, ग्रीन जोन और इस तरह के ऑरेंज जोन, ये जोनों में बांटा गया है कि जहां पर जिस जोन में सबसे अधिक समस्या है उस समस्या, उसको रेड जोन में विभाजित किया गया है। श्रोताओं, एक इस तरह की एक सुनियोजित तरीके से की गई एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको और आपकी कठिनाइयों को, जो आपकी समस्या है ना, इस समय बिजली बिल को लेकर समस्या होती है, कभी किसी को समस्या होती है कि मेरे लोड में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कभी किसी को समस्या है कि साहब मेरे नाम में गलती है, मेरा नाम परिवर्तित नहीं हो रहा है, किसी को DTR से संबंधित समस्या है। श्रोताओं, इतनी तरह की समस्याएं होती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। जैसे किसी के मीटर में डिस्प्ले की समस्या है और डिस्प्ले में रीडिंग नहीं आने के कारण उसे आकलित खपत का बिल दिया जा रहा है। मैं सभी श्रोताओं से कहता हूं कि आज ही, जैसे ही आप मुझे सुन रहे हैं, इसके तुरंत बाद आप अपने मीटर को चेक कीजिए, क्या उसमें डिस्प्ले है। अगर डिस्प्ले है तो आप उसमें रीडिंग को देखने का प्रयास कीजिए। श्रोताओं, आपको बता दूं कि समय आएगा, डेट आएगी और उसके बाद आपको KWH में रीडिंग दिखाई देगी। रीडिंग देखिए और इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यदि आपके मीटर में डिस्प्ले नहीं है तो तुरंत ही अपने वितरण केंद्र पर जाकर एक लिखित में आवेदन दीजिए कि मेरे मीटर की डिस्प्ले खराब हो रही है, उस वजह से उसमें जो रीडिंग नहीं दिख पा रही है, इस वजह से मेरा मीटर तुरंत प्रभाव से बदला जाए। श्रोताओ, जब आप इस तरह का आवेदन नहीं करते हैं तो कंपनी की मजबूरी होती है कि वे आपको आकलित खपत का बिल दें, और कंपनी जब आपको आकलित खपत का बिल देती है तो आप घबरा के उसकी

0: शिकायत करने लगते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें अत्यधिक संख्या में की जाती हैं, और जब अत्यधिक संख्या में शिकायतें इस तरह की आती हैं तो विभाग को भी इस तरह की शिकायतों का निपटारा करने में समय लगता है। तो हम अपने सभी श्रोताओं से कहते हैं कि अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए आप स्वयं जागृत होइए। आप इसके लिए उत्तरदायी हैं कि आप जब किसी चीज को नहीं देखते हैं, किसी सिस्टम का मुआयना नहीं करते हैं, तो आपको उसकी हानि उठानी पड़ती है और आपको ये सब जो परेशानियां होती हैं इन सब का सामना करना पड़ता है। तो श्रोताओं, एक छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया। आपकी केबल में कोई खराबी है, आप केबल को बदलवा लीजिएगा। आपके लोड में परिवर्तन होना है, लोड परिवर्तन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सारी समस्याएं आप ऑनलाइन भी हल कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप विद्युत वितरण केंद्र में जो संपर्क अभियान जारी है वहां पर जाइए और अपनी समस्या का निराकरण कीजिएगा। श्रोताओं, इस समय पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि बिजली उपभोक्ता जो हैं वो साइबर जालसाजों से सावधान रहने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। श्रोताओं, कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पर एक लिंक आई और आपसे कहा गया, या एक मैसेज आया आपसे कहा गया कि कुछ ही घंटों के पश्चात आपका जो बिजली कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बिजली कंपनी आपको इस तरह के मैसेज नहीं भेजती, और अगर कोई मैसेज आता भी है तो जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की, तो MPCZ, आप ध्यान रखिएगा, MPCZ से इस तरह के मैसेज आ सकते हैं कि आपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, अपनी बिजली बिल के भुगतान की राशि को तुरंत भुगतान करें। श्रोताओं, ऐसा देखा गया है कि बिजली बिलों का नकद भुगतान आपको कंपनी के जोन वितरण केंद्र कार्यालय POS मशीन अथवा अधिकृत भुगतान केंद्रों जैसे MP ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर करें। उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के कैशलेस भुगतान के लिए कंपनी के पोर्टल पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, UPI, ECS, VBPS कैश कार्ड और वॉलेट आदि, फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप पे और उपाय ऐप के माध्यम से भी बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। श्रोताओं, किसी भी उपभोक्ता को असमय विद्युत विच्छेदन से बचने के लिए, यानी कि बिजली के डिसकनेक्शन से बचने के लिए, किसी निजी मोबाइल नंबर से कॉल कर भुगतान करने के लिए कोई SMS व्हाट्सएप जारी नहीं किया जाता। ध्यान से सुन लीजिएगा, कंपनी द्वारा SMS केवल निर्धारित सेंडर ID से ही भेजे जाते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं कि MPCZ से आपको भेजे जाएंगे, और उपभोक्ता किसी अन्य सेंडर ID अथवा निजी नंबर से आए भ्रामक मैसेज से सतर्क रहें। कंपनी के अंतर्गत विद्युत देयकों के भुगतान के लिए उपभोक्ता पहचान नंबर यानी कि IVRS नंबर की जरूरत होती है, और IVRS नंबर के आधार पर ही जोन वितरण केंद्रों या अन्य गेटवे MP ऑनलाइन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, व्हाट्सएप पर बिजली बिलों का भुगतान होता है। उपभोक्ता किसी भी अनजान मोबाइल नंबर से आए फोन या व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर किसी भी मोबाइल नंबर पर देयकों की राशि को अंतरित ना करें, साथ ही अपना पिन नंबर किसी के साथ भी साझा ना करें। कंपनी के ऐसा संज्ञान में आया है कि साइबर जालसाजों के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को SMS, व्हाट्सएप मैसेज अथवा IVR तकनीक से फोन कॉल करके नंबर दबाने के लिए कहा जाता है, जिसमें बिल भुगतान कराने के लिए भय बनाकर कि आपकी बिजली कुछ घंटों बाद काट दी जाएगी, इसके लिए बिल भुगतान करने के लिए विशेष नंबर दबाएं, मोबाइल नंबर विशेष अथवा अनजान लिंक ऐप और क्लिक कर या संपर्क कर बकाया राशि जमा कराएं। इस प्रकार के SMS, व्हाट्सएप मैसेज और IVR फोन कॉल फर्जी हैं। इन पर कोई भी श्रोता ध्यान न दे। इस प्रकार के फर्जी साइबर जालसाजों से सतर्क रहें, सावधान रहें, और साइबर फ्रॉड संबंधित किसी भी घटना की सूचना तत्काल भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अवश्य ही दर्ज कराएं। श्रोताओं, ये सभी सूचनाओं के साथ अब अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार शिवपुरी।
0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 8 बजने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे हैं।

0: भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग

0: उद्योग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने जो TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
1: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
6: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
9: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
8: More from our correspondent.
0: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to multilateralism and global food security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
8: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She says stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several such channels become highly active in the run-up to major exams, circulating fake paper leak claims, clickbait content and unverified information that trigger panic, anxiety and confusion among students and parents. It was highlighted that many such links redirect users to automated bots and fake groups designed to amplify misinformation. In West Bengal, re-polling has begun for the Falta Assembly constituency in South 24 Parganas district. Voting, which started at 7 a.m., will conclude at 6 p.m. The Election Commission had ordered a complete re-poll in Falta Assembly constituency, scrapping the voting that was held on 29th of April following multiple reports of irregularities, including voter intimidation, unauthorized presence inside polling booths, and possible tampering with voting machines. A total of 6 candidates are in the fray, including 2 independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. BJP's candidate is Dibangshu Panta. Congress has fielded Abdul Razak Molla, while the CPIM has fielded Shambhu Nath Kurmi. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha for the latest update. Kalyan, what's the latest update that you have?
10: Sarah, the latest update is the voting is going on peacefully and no reports of violence or any untoward incident came in. And that this week, this candidate Jahangir Khan declared that he would not contest in the election. And in this situation, the fight is among the candidates of BJP, TMC, BJP, CPIM and Congress. We can expect that peaceful voting trend can continue throughout the day. Sarah.
8: Right. Thank you so much, Kalyan, for that update. Moving on, West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force, BSF, for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. More from our correspondent.
4: Yesterday, at the State Secretariat Novanno, Chief Minister Shubhendu Odigari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. West Bengal shares nearly 2,200 kilometers of the 4,000 kilometer India-Bangladesh border, while fencing already covers about 1,600 kilometers, 600 kilometers remain unfenced. Yesterday's handover included the land for 27 kilometers, out of which 18 kilometers for fencing and 9 kilometers for BSF outposts and infrastructure. The Chief Minister assured that more land will be transferred soon, with costs fully covered by the central government and BSF. BSF Director General Praveen Kumar praised the state government, noting that cooperation long needed in border operations is now being received under the new administration.
11: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
8: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIN News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on Air app. Welcome back. You're listening to Morning News. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathineni, said that Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
12: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
8: Mr. Parvathineni's remarks came after Pakistan's representative raised the issue of Jammu and Kashmir at the debate. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he's looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is world's oldest, so the U.S. looks forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranadhir Jaiswal, said, President Christodoulidis' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership, and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. The state visit comes at a moment when Cyprus holds the presidency of the Council of the European Union. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will expand his cabinet today. Rajesh Kumar, leader of Congress Legislature Party, and P. Vishwanathan, Melur MLA, will be inducted into the cabinet. This is the first time after 1967 that the Congress members will join the state cabinet. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground, Eden Gardens, last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest 45 runs, while Raman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while Chennai Super Kings are eyeing for the fourth spot in the points table. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heat wave conditions today at places over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also likely to prevail during the day over parts of Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Vidarbha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
13: Thank you, Saira. Prime Minister's visit to Italy is widely noticed by the press today, along with developments in US-Iran conflict. Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni at the Colosseum, and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap, strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, No Cosmetic Job with Jabs, warns drug regulator. The Indian Express, in an exclusive, writes, Working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
8: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
14: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है. प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त सन 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम, कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर ये उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया, उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रख दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव-गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र

प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई। किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी। पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको अनंत सिंह रावत और बालकृष्ण के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अनंत सिंह रावत के गाए इस लोकगीत।

अनंत सिंह रावत की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए, सुनिए ये लोकगीत।

0: अनंत सिंह रावत की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। बालकृष्ण की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको ये लोकगीत, लीजिए सुनिए।

बाल कृष्ण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए बाल कृष्ण की आवाज में एक और लोकगीत।

बालकृष्ण की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। बालकृष्ण की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, लीजिए सुनिए।

बालकृष्ण के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। श्रोताओं, आज पूरे विश्व में विश्व चाय दिवस की चर्चा हो रही है, और विश्व चाय दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि जीवन की शुरुआत कहें हम, मतलब अपने दिन की शुरुआत करें, जीवन की शुरुआत करें, क्योंकि हम अपने जीवन की शुरुआत सुबह उठने से करते हैं, और उठने में सबसे पहले हम इंतज़ार रहता है चाय का, चाय की चुस्कियों का। तो चाय में एक ऐसा स्वाद है, चाय पर जो बात हो सकती है, ऐसा कहते हैं, लोगों की मान्यता है कि चाय की टेबल पर जब बैठकर चाय पी जाती है, चाय की टेबल बोला है हमने, टेबल पर चाय नहीं, चाय की टेबल पर बैठकर जब चाय पी जाती है तो उसका स्वाद अपनों के अंदर एक ऐसी मिठास घुलता है, आपके रिश्तों को और आपके अपनत्व को प्रदर्शित करता है। चाय में जो चाह होती है वो बड़ी अद्भुत और अद्वितीय होती है। श्रोताओं, कई बार आपने देखा होगा कि आप चाय पर आ जाइए, बैठ के बात करेंगे, मतलब चाय एक ऐसा अद्भुत, कहना चाहिए कि ऐसा परिदृश्य है, उसकी परिकल्पना कुछ ऐसी है कि चाय अपने आप में सर्वोपरि है। विश्व चाय दिवस के उपलक्ष में हम आपको ये गीत में दिया हुआ संदेश आपको सुनवा रहे हैं। संदेश क्या है? एक पैगाम है, और पैगाम यह है कि हम चाय पर आपको उस रिश्ते की बात करने के लिए बुला रहे हैं। देखिए, आप चाय का कमाल देखिए, मतलब चाय का कमाल ऐसा है कि उसे फिल्मों की फिल्मांकन में, उस कहानी में चाय को बीच में लाया गया। और जब भी आप यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, तो एक बिल्कुल सिंपल सी कटसी है चाय, क्योंकि ये चाय ही है जो आपस में एक दूसरे के प्रेम को, एक दूसरे के अपनत्व को बनाए रखती है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें इस गीत से, लीजिए।

तो श्रोताओं, चाय पर यह गीत आपने सुना, सौतन फिल्म का गीत था। लता जी के साथ थे किशोर कुमार साहब, सावन कुमार और प्रदीप कौशिक ने इस गीत को लिखा था, उषा खन्ना ने इस गीत को कंपोज किया था। श्रोताओं, इस गीत को सुनने की जो फरमाइश की थी वो थी फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, हाजी सन्नू मार्केट एबी रोड शिवपुरी से जाहिद खान और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण इसी गीत को सुनना चाहते थे। डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, तन्मय गजबिये, बेवी अनिष्का, राधिका गजबिये और उनके तमाम मित्र। फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। सिर्फ तुम, इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए है।

0: सिर्फ तुम, इस फिल्म में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और साथियों की आवाज में, गीत समीर का था। श्रोताओं, इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी 40 नंबर कोठी पुरानी शुपरी से राशिद खान, बेगम सूफिया वानो और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके तमाम मित्र। फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, विजू शाह के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और साधना सरगम का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीत आनंद बख्शी का है, फिल्म का नाम है मोहरा और गीत को सुनने की फरमाइश की है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे और उनके तमाम मित्र। सदर बाजार टेकरी रोड शिवपुरी से यशवंत जैन, सुनील जैन, अक्षत जैन, पंकज जैन, विनोद शर्मा, प्रदीप शुक्ला, गगन भार्गव, राजेश भार्गव और सुनील शर्मा, इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए मोहरा फिल्म का ये गीत।

मोहरा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में, गीत आनंद बख्शी, कथा संगीत बिजू शाह का। फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं कॉलेज गर्ल फिल्म के इस गीत से। इसे सुनने की फरमाइश की है फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण।

कॉलेज गर्ल। श्रोताओं, इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर के गाए इस गीत के साथ ही अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री
1: केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी, आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। जिले के खजुराहो और नौगांव का तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जिलेवासियों को धूप और लू से बचाव करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से शीतल पेयजल का उपयोग करने, धूप में नहीं निकलने, धूप से बचाव के लिए चश्मे और छाते का उपयोग करने को कहा है। जिले में इन दिनों कलेक्टर के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्राचीन तालाबों, बावड़ियों की साफ सफाई, पुराने तालाबों का गहरीकरण, सार्वजनिक कुओं की साफ सफाई की जा रही है, ताकि आने वाली बारिश के पहले बेहतर जल प्रबंधन हो सके। निजी समाजसेवी संस्थाएं भी जल प्रबंधन के कार्य में सहभागी बनी हुई है। छतरपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमा शिवाय अर्जरिया ने बताया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायत में एक एक काम जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सुनिश्चित किया गया है। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य जारी है। इसी क्रम में गौरीहार तहसील में सबसे पहले HLB का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा हरपालपुर, लवकुशनगर, चांदला निकायों में भी शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी पार जायसवाल ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगण को, सुपरवाइजर्स, ग्रामीण अधिकारी, SDM सहित संपूर्ण टीम को बधाई दी है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी और समर्पण से ही जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को समय से पहले सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। SDM बलबीर रवन ने प्रगणकों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में खरीफ फसल की तैयारियों को लेकर छतरपुर जिले में जागरूकता अभियान प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में 16 मई से 10 दिन तक संचालित होने वाले कृषि रथ को छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO नमा शिवाय, अर्जरिया उप संचालक कृषि अनिल मिश्रा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1,37,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। जिला नागरिक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी सीताराम कोठारी ने बताया कि जिले में 80 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें किसानों के लिए छाया पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई थी। शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीदी 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है। किसानों को 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जा रहा है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और कोताही ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण टीम में गठित की गई है। छतरपुर जिला कलेक्टर पार जायसवाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील पांडे का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: मैं विनय उपाध्याय, आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10:04:10 हुए हैं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम का आगाज कतील शिफाई साहब की लिखी इस गजल से।

जगजीत सिंह की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये गजल। शायर थे कतिल शिफाई। सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। राहत इंदौरी की लिखी ये गजल सुनिए, आवाज जगजीत सिंह की है।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल, शायर थे राहत इंदौरी। श्रोताओं, आपको बता दें कि सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए निदा फाजली की लिखी यह गजल।

0: जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल

राज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अलका याग्निक की आवाज में गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अलका याग्निक और उदित नारायण का एक और गीत सुनिएगा। गीत समीर का है, फिल्म का नाम है

कसूर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में गीत समीर कथा, संगीत नदीम श्रवण का। श्रोताओं आपको बता दें कि फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। वीर जारा फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, लता जी के साथ है सोनू निगम, गीत जावेद अख्तर साहब का है। श्रोताओं आपको बताएं कि इस गीत का मूल संगीत तैयार किया था मदन मोहन साहब ने, जिसका पुनर्संयोजन किया संजीव कोहली ने। गीत

वीर जारा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता जी के साथ सोनू निगम की आवाज में। गीत जावेद अख्तर का था और आपको बता दें कि इस गीत का मूल संगीत तैयार किया था मदन मोहन साहब ने, जिसका पुनर्संयोजन किया संजीव कोहली ने। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल के साथ उदित।

तुम बिन। श्रोताओं, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे उदित नारायण के साथ अनुराधा पौडवाल को। गीत फैजान वर का था और संगीत निखिल विनय का। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर के लिखे इस गीत से। आवाजें अनुराधा पौडवाल के साथ है मनर उदास।

0: सड़क फिल्म में अनुराधा पौडवाल के साथ मनहर उदास के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 11 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे फरिश्तों की।
2: हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार,
1: किससे बातें हो रही है हमारी?
2: आज प्रश्नबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी रंगीन लेटर वाला बोल रहा हूँ मैम।
1: नियाज मोहम्मद जी, बहुत स्वागत है आपका।
2: आपका कार्यक्रम सुनता हूँ मैडम, बहुत अच्छा लगता है। पहली बार मेरे को फोन लगा है मेरा आपके कार्यक्रम में
1: जी।
2: वैसे मैं लेटर लिखता रहता हूँ आप।
1: जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका नियाज जी। नियाज मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में फरिश्ते के तौर पर आप किसे मानते हैं? हम जिंदगी में फरिश्तों की बात करना चाह रहे हैं। हाँ,
2: जो आज हमारा जो यकीन इस चीजों से होना चाहिए, तब जो मनोभाव हमारा, जो मानवता है, जो समाज है, उस परिवर्तित के रूप में जो हमारा है उसको मानने पर ही फरिश्ते माने जा सकते।
1: कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में?
2: यही बताता रहा हूँ मैं बिल्कुल, कि आदमी जो चीज अपने अच्छे कर्मों का फल अगर हम सही आत्मविश्वास के साथ अगर करते हैं, या वो किसी भी धर्म का हो, या किसी भी समाज का हो, या किसी भी व्यक्ति के भाव को अच्छे तरह से अगर उसको व्यवस्थित करते हैं तो वो फरिश्ते के रूप में कहलाएगा। यदि अच्छा काम नहीं कर रहा है और वो मान लो कि हम उसे मुझे फरिश्ते कहो तो ही नहीं हो सकता
1: जी। फरिश्ते जो हैं वो नेक दिल होते हैं, नेक काम करते हैं और इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं।
2: वो कटु शब्दों से बिल्कुल दूर रहते हैं।
1: जी जी, चलिए आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी है फरिश्ते की, और उम्मीद करते हैं कि ये फरिश्ते की बातें जो आज इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं वो आगे चढ़कर कुछ और भी रूप ले और बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां भी मिलें और लोगों के सुझाव भी मिलें।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम साहब, बहुत अच्छी आपने पूछा, मुझे भी अच्छा लगा
1: जी।
2: और इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ता है मैडम इससे
1: जी।
2: आदमी की नकारात्मक जो टिप्पणियां जो होती है ना,
1: हाँ,
2: उसके भाव वो घर कर जाती है
1: जी।
2: ये कार्यक्रम जो होता है वो प्रशंसक जो आप जो होते हैं,
1: हाँ,
2: आपके शब्दों में जो भाव आते हैं
1: जी,
2: वो हमें बिल्कुल प्रभावित करते हैं और हम इसी से आपसे सुन के,
1: हाँ,
2: हम भी इसे अच्छे लिखते हैं और सुनते हैं और कार्यक्रम में फोन लगता है तो हमें भी शब्दों में भाव पैदा होता है।
1: चलिए, अच्छा लगा
2: आपका मैडम
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नियाज मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया
2: जी। जी
1: नमस्ते।
2: दोस्ताना गाना का गाना है मैम।
1: सर यहाँ
2: रहे ये दोस्ता हमारा
1: जी, यहाँ पर क्या गाने हम अपनी पसंद के सुनाते हैं, कोशिश करते हैं अगर हम डाल सकें।
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का ही गाना सुना दीजिए मैम।
1: बिल्कुल,
2: बहुत अच्छा लगा आपको कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। परिवार को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद अग्रिम
1: जी,
2: और आप
1: आपको भी,
2: हम सब मिलकर रहे
1: जी। नमस्कार।

0: हेलो
1: जी मैडम।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी मैडम जी।
0: आपको कभी समझ में आया कि ये दोस्त नहीं होते तो आज मेरा ये काम रुक जाता या ये काम नहीं हो पाता?
1: जी
0: ऐसा कभी हुआ तो
1: ऐसा हुआ है सर मैडम जी।
0: बताइए वो वाकया क्या था।
1: जी मैडम जी, ऐसा मेरे साथ हुआ है। ये कल के लिए थे, गया जी गए थे हम तो
0: हाँ
1: अपने पिताजी की वो कराने के लिए पिंडदान। तो
0: हाँ
1: हमें बहुत समस्या आ गई थी, हमारा पर्स सब चला गया था, बैग भी चला गया था। तो
0: हाँ
1: हमारे साथ में एक मित्र गया था, हमारे साथ
0: हाँ
1: में, तो
0: हाँ
1: उसने हमारे खाने पीने से लेकर और पूरी व्यवस्था, जब तक हम घर नहीं लौटे आए
0: हाँ
1: और हमारे साथ में खड़ो ही रहो भाई, तुम्हें चाय तो नहीं पीने क्या है। लेकिन ऐसा दोस्त होना चाहिए मैडम जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही दोस्त हमेशा मिले, सभी को मिले। एक बार आपका परिचय फिर दे दें।
1: जी मैडम जी मैडम, हम अपने जिला दमोह से बोल रहे हैं,
0: हाँ
1: गिरधारी सेन नाम है हमारा। जी मैडम
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा गिरधारी सेन जी आपसे बात करके, बहुत
1: जी
0: शुक्रिया।

0: आकाशवाणी भोपाल।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का ये प्रसारण है
0: जी
1: जी, आपका परिचय दीजिए।
0: मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी कैसे हैं राजेश नेवा जी?
0: बढ़िया है, ठीक ठाक है।
1: जी जी
0: और
1: चलिए,
0: आपके लगभग प्रसारण बहुत पुराना श्रोता हूँ, इसलिए बहुत पुराने कार्यक्रमों से भी जुड़ाव रहा है
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वर्तमान में जो शानदार कार्यक्रम आ रहे हैं उनसे भी जुड़ाव है और
1: जी
0: हमेशा रहेगा।
1: जी जी जी
0: जी
1: आज बात आपके गीत हमारे में, हम फरिश्तों के बारे में बातें कर रहे हैं। जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसी कोई घटना जिसमें कभी आपको कोई व्यक्ति जो है वो फरिश्ते के रूप में मिला हो?
0: अच्छा, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय की बात है, किसी कारणवश एक पेपर मेरा मिस हो गया था।
1: जी
0: तो एक चूंकि सामान्य क्लास थी तो हमारी क्लास के कक्षा शिक्षक थे,
1: जी
0: तो उन्होंने जब जांच की तो हमारा पेपर नहीं मिला, तो वो फिर घर पर आए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत होना, आप पेपर बाद में भी दे सकते हो। तो मेरी बहुत सी बड़ी परेशानी एक बच गई उस समय। तो मैंने कहा ये इस तरह के लोग जो हैं वो निश्चित रूप से दूसरों के काम आते हैं और परेशानियां दूर करते हैं।
1: यानी आपके जीवन में शिक्षक जो हैं वो एक फरिश्ते के रूप में आए थे?
0: जी, मैं चूंकि स्वयं शिक्षक हूँ
1: जी
0: और एक छोटा सा कार्टूनिस्ट भी हूँ
1: जी,
0: तो शिक्षकों का एक अलग मेरे मन में आदर सम्मान हमेशा है और रहेगा।
1: जी, शिक्षक हमेशा आदरणीय होते हैं क्योंकि वो जीवन
0: जी,
1: के लिए
0: जी,
1: वो आधारशिला बनाते हैं। माता
0: जी,
1: पिता तो पहली पाठशाला होते हैं, प्रथम पाठशाला तो माँ ही होती है, लेकिन
0: हाँ बिल्कुल, जीवन उन्हीं से शुरू होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: सही जो मायने में जीवन है
1: जी
0: वही जिंदगी की सही राह दिखाते हैं और हम आगे चल के प्रगति कर सकते हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जीवन का साक्षात्कार जो है वो हमारे शिक्षक ही हमें करवाते
0: जी,
1: हैं।
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा राजेश नेमा जी आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं आप हमारे कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़ा करेंगे और भविष्य में भी आप हमसे बातें करेंगे।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, किससे बातें कर रहे हैं हम, परिचय दीजिए।
0: इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
1: जीनत परवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसी
0: जी
1: हैं?
0: अच्छी हूँ मैम।
1: अच्छा जीनत परवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके
0: जी
1: लिए कोई फरिश्ता बन के आया है कभी? कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें आपको वो इंसान जो है वो फरिश्ते के रूप में नजर आया हो?
0: हाँ, वैसे तो हुआ है ऐसा।
1: जी बताएं।
0: जैसे कुछ भी जरूरत पड़ती तो कोई इंसान है जो फरिश्ता बन के आ जाता है। जब
1: तो आपके जीवन में वो फरिश्ता कौन है?
0: फरिश्ता मेरे हस्बैंड ही है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा। जीवन साथी जो है वो सही मायने में आपके सारथी होते हैं। और
0: जी
1: तो बताइए, आप किस तरीके से मानती हैं कि जीवन साथी जो है आपके, वो आपके लिए फरिश्ता है?
0: बस कुछ भी काम होता है तो कर देते हैं।
1: और
0: जैसे कहीं जाना होता है तो मना नहीं है, कहीं पे भी घूमो फिरो, घर के कामों में हेल्प कराते हैं।
1: हाँ, इसमें बतौर फरिश्ता आपको क्या समझ में आया जीनत जी? जैसे कि हम कहते हैं कि जिंदगी में किसी ने यदि पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित किया है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया है, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, आपके भाई हो, दोस्त हो, जीवन में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया हो, इस प्रकार की कोई बात हो तो वो बताएं आप।
0: हाँ, जैसे कहीं अर्जेंट कहीं जाना रहता है तो एकदम वो ड्यूटी भी छोड़ के मतलब आ जाते हैं, छोड़ने मेरे को कहीं
1: हाँ,
0: जाना पड़ता है अर्जेंट। तो
1: अच्छा, तो चलिए हम मानते हैं कि आपके जीवन साथी जो हैं वही आपके लिए फरिश्ते हैं
0: जी
1: जी। चलिए आगे बढ़ने के लिए,
0: सपोर्ट करते हैं ना, सबके लिए करते हैं।
1: चलिए जीनत परवीन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा
0: जी शुक्रिया मैम।
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार दीदी,
1: जी, आपका परिचय दे दीजिए।
0: मैं ग्राम गुरुजी कला से राजकुमार लखेरा बोल रहा हूँ।
1: जी लखेरा जी, आपका बहुत स्वागत है।
0: जी, और कैसी हैं मैडम जी?
1: जी हम तो अच्छे हैं। लखेरा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि
0: जी
1: जीवन में आपके लिए फरिश्ता क्या है, या जीवन में आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति कभी आया हो जो आपके लिए फरिश्ते के तौर पर साबित हुआ हो,
0: जी वैसे मैडम जी, वैसे तो
1: कभी किसी ने बहुत आगे बढ़ के मदद की हो, कभी परेशानी में घिरे हुए हो आप और आपकी किसी ने बहुत अच्छे से मदद करी हो, भगवान के रूप में खड़ा हो गया हो आपके लिए।
0: ऐसा वाक्य अब तो नहीं आया मैडम जी। बाकी ये रहता है कि माता पिता यदि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संस्कार दे के और उनको संपन्न बना रहे हैं।
1: माता पिता आपके लिए किस प्रकार से फरिश्ते साबित हुए हैं ये बताइए।
0: यही कि हर समय पे मतलब मदद करते रहते हैं, कभी कोई समस्या नहीं आ पाती। यदि कोई आती है तो वो मतलब है उसका निराकरण करते हैं।
1: हाँ
0: कभी कोई नहीं आ पाती समस्या, वैसे उनके उसमें रह
1: हाँ
0: मदद करते रहते हैं,
1: माता पिता,
0: और माता पिता। और कभी ऐसे मौका आया तो दोस्त भाई, अगर यदि अच्छे हैं तो दोस्त भाई भी मदद करते हैं।
1: हाँ तो दोस्त भाई भी तो वो संस्कार लेते हैं जब माँ बाप से, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं वो आपके लिए, मदद के लिए।
0: जी मैडम,
1: चलिए, तो अच्छा लगा आपसे बात करके कि माता पिता के संस्कार के साथ में भी इंसान जो है वो फरिश्ते सा काम करता है।
0: जी
1: जी लखीरा साहब, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।

0: चलिए, आपसे भागचंद साहू जी हम ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी में आपके लिए सैनिक क्या मायने रखते हैं और सैनिक को आप फरिश्ते के तौर पर कैसे देखते हैं?
1: सैनिक तो दीदी ऐसा है, देखो देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बिना कुछ नहीं हो सकता, देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है।
0: हाँ, और सैनिकों के लिए और भी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि?
1: और दीदी हम तो देखो पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं हम,
0: हाँ
1: हाँ उसी में लगे रहते हैं और कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं।
0: जी, चलिए, सैनिक आज सीमा पर हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं और निश्चिंत
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल,
0: कि,
1: उनमें अगर थोड़ी अपन सुरक्षित हो सका।
0: जी, निश्चिंत है कि हमारा देश सुरक्षित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल
0: चलिए भाग्यचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जी मैम जी
1: जी, आपका परिचय दीजिए।
0: आपका नेम है सोता कमलेश कार, बात कर रहा हूँ जिला नरसिंहपुर के ग्राम करकबेल से। सकुशल है मैम जी? बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। जी
1: जी कमलेश कहा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके लिए फरिश्ता कौन है, कोई वाक्य बताइए। आज
0: सबसे पहले फरिश्ते की बात करें तो सबका फरिश्ता तो मैं कह सकता हूँ, हम जैसे मानते हैं भगवान।
1: जी जी जी,
0: उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। जो सांस ले रहे हैं, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी,
1: हाँ हाँ,
0: इन सभी के अस्तित्व के कारण ही हमारा अस्तित्व है।
1: जी जी जी,
0: रही दूसरी बात फरिश्ते की, जो जीता जागता रहता है, जो सामने दिखता है बिल्कुल,
1: हाँ,
0: मेरे घर में मेरा परिवार है।
1: जी जी जी,
0: और रही दूसरी बात तो मेरे ग्राहक बंधु है, चाय नाश्ते की दुकान है मैम जी, तो ग्राहक बंधु जो होते हैं वो मेरे लिए फरिश्ते का काम करते, मेरे लिए कह सकते हैं जीवन यापन के लिए जो माध्यम होता है उसके तहत वो उपस्थित होते हैं और मेरा सहयोग माध्यम से मेरी दुकान चलती है।
1: हाँ।
0: तो इस प्रकार से दो प्रकार के मेरे फरिश्ते हैं। और तो तीसरी मैम जी एक बात और कहेंगे कि दोस्त हैं मेरे कुछ, एक ऐसे दोस्त हैं जो सामने तो दिखते लेकिन मदद मैम जी वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी हमेशा करते ही रहते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात कही आज आपसे, बातें करके बहुत अच्छा लगा कमलेश कहार जी। आपने पंचतत्व की बात कही है, परिवार की बात कही है और ग्राहक की बात कही है, वाकई में आपके जीवन के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपको और आपकी टीम को।
1: जी जी।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी मैम, नमस्कार। अमर सिंह राठौर बोलो मैम, कटनी मध्य प्रदेश से, ग्राम डिठवारा। जी मैम, आज कौन सा विषय रखा हुआ मैम?
1: जी आज हम बात कर रहे हैं फरिश्ते की। जो कोई भी आपके जिंदगी में आपके लिए कभी फरिश्ते के रूप में उपस्थित हुआ हो या आप मानते हैं कि वो फरिश्ते हैं, तो वो बताएं
0: मैम,
1: कुछ।
0: सबसे पहले तो मेरे माता पिता फरिश्ते हैं मैम, जिन्होंने
1: जी
0: मेरे को धरती पे लाया, उन्होंने इतना सब कुछ शिक्षा दी, बचपन में मेरे को शिक्षा दी।
1: जी
0: और दूसरे फरिश्ते हैं मैम मेरे गुरु जी,
1: जी
0: जिन्होंने मेरे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, उन्होंने इतना सहयोग किया,
1: जी जी
0: आज आदमी इस जगह पे है।
1: जी
0: जी मैम। और तीसरी मैम, जीवन संगिनी है मैम, पत्नी
1: जी
0: जो हमेशा साथ साथ निभाती है,
1: जी जी
0: उससे बड़े फरिश्ता और कौन हो सकता है।
1: चलिए कोई और वाकया बताना भी चाहते हैं कुछ तो बताइए कि किस प्रकार से कभी माता पिता और गुरु और जीवन संगनी की आपने बात करी है।
0: जी, मैम मैं जब भी क्या कुछ थोड़ा परेशान होता हूँ, कुछ भी रहता हूँ, तो माता पिता से अपनी बात मैं शेयर करता हूँ और वो मुझे बहुत ढंग से गाइडलाइन देते हैं और
1: हाँ
0: मुझे सफलता प्राप्त होती है। तो मेरे लिए माता पिता सर्वोपरि है मैम।
1: जी
0: जी, और उन्हीं की मैं वंदना करता हूँ, रोज सुबह उठ के दोनों के चरण स्पर्श करता हूँ।
1: जी
0: यही मेरी दिनचर्या है।
1: चलिए, बहुत
0: जी
1: अच्छा
0: मैम।
1: लगा अमर सिंह जी। माता
0: जी,
1: पिता आपके लिए और जो फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते आपके जीवन में हमेशा बने रहें, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही कामना करते हैं
0: जी मैम,
1: जी।
0: थैंक यू।
1: धन्यवाद।

0: ये फरिश्ते हमारी जिंदगी में कई बार कई रूप में सामने आते हैं। जरूरत है ऐसे एहसास को समझने की, ऐसे जज्बातों को समझने की और साथ ही ऐसी ऊर्जा को समझने की जिससे बिगड़ता काम सवर जाए, जो अनहोनी को टाल जाए और जो आपको कृतज्ञ कर जाए। जीवन में फरिश्ते ये मूक प्रकृति भी है, ये वसुधा है जिसे हमने संसाधनों से सराबोर किया है। हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। आज कार्यक्रम में हमने बात की अपने जीवन के फरिश्तों की। आप सभी श्रोताओं के विचार जानकर हमें खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत। हमारे ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बन

0: बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। डॉ. यादव परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम का कल भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। वहीं इससे पहले भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने सीरीज के चौथे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम को 4-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने आपके लिए चुना है। किशोर कुमार की आवाज है, अलका याग्निक ने साथ दिया है, माया गोविंद ने गीत लिखा है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है पिघलता आसमान। पसंद आप सब श्रोताओं की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को पसंद किया है अमित रैकवार, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवपालिका, पारस और संदीप ने। ये पत्र हमें मिला है बैतूल से। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म पिघलता आसमान से ये नगमा।

0: और अब आपको सुनवा रहे हैं मर्यादा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। मन्नू, मंजू, पिंकी, ऋषिका, रवि, स्वीटी, मनोज, कामिनी, इन्होंने पत्र लिखा है भोपाल से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल और प्रियांश वर्मा के साथ ऋषि वर्मा। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर मर्यादा फिल्म का ये नगमा।
1: गुस्सा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं खंडवा के श्रोताओं की पसंद पर गीत। पसंद है संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त पंचौलिया परिवार की। फिल्म का नाम है काजल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत लिखा है साहिर ने और संगीत है रवि का। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

एक थी लड़की, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जीएम दुरानी और साथियों की है। विनोद का लिखा ये गीत है, संगीत अजीज़ कश्मीरी का, पसंद आप सब श्रोताओं की। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु और तासु इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से मयंक और राशि, पंकज और साधना इस गीत को पसंद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक थी लड़की फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। मजरूह के शब्द हैं, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, बब्बू और डब्बू ने ये गीत सुनना चाहा है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र। आज सुनिए इसकी आठवीं कड़ी।

सभी श्रोतागण, दादा दादी एवं नाना नानियों को विशेष प्रणाम। आप सबको पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियाँ जरूर भाती होंगी। अभी तो ढेर सारी कहानियाँ और भी हैं। पिछली कथा में हमने सुना, लघु पतनक नामक कौवे ने देखा कि किस प्रकार चित्रग्रीव अपने साथियों को जाल में फंसा देखकर घबराया नहीं, बल्कि उन्हें हौसला दिया। सबने मिलकर जाल को उड़ा लिया। बहेलिया हार कर लौट गया। लघु पतनक भी उनके साथ उड़ चला। फिर उसने देखा कि हिरण्यक नामक चूहे ने उन सबको जाल से मुक्त कर दिया। लघु पतनक ने हिरण्यक से मित्रता कर ली। पहले तो हिरण्यक तैयार ही नहीं हो रहा था, फिर लघु पतनक के तर्क के सामने उसने हार मान ली। वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन लघु पतनक ने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। हिरण्यक को लेकर वो दक्षिण की ओर अपने मित्र मंथरक कछुए के पास पहुंच गया। मंथरक ने उनका बहुत स्वागत किया, परंतु मंथरक ने हिरण्यक से अपनी पुरानी जगह को छोड़ने का कारण पूछा। हिरण्यक ने बताया, अपने भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। इस संदर्भ में उसने छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। एक वणिक पुत्र की कथा भी सुनाई, जो हमेशा अपने भाग्य पर ही विश्वास करता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। संयोगवश उसका मिलन राजकन्या से हो गया, लेकिन सच्चाई ज्ञात होने पर राजकन्या ने उसे निकाल दिया तो प्राप्त व्यर्थ नगर की ओर चल पड़ा। वहीं से एक बारात निकल रही थी, वो उसमें शामिल हो गया। अब आगे।

0: क्या शानदार बारात है। लगता है जैसे किसी बड़े आदमी के घर जा रही है। अच्छा, ये तो नगर सेठ की बेटी की शादी है। अरे ये कोलाहल कैसा, लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अरे ये तो एक मदमत हाथी महावत से छूट गया है, सबको रौंदता हुआ जा रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। ये दुल्हन बेचारी अकेली खड़ी है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। सुनिए, आप डरे नहीं, अब मैं आपका रक्षक हूं।
1: मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आप नहीं जानते मैं कितनी डरी हुई थी, अब मुझे थोड़ी राहत मिली।
0: मेरा हाथ थाम लो कन्या, तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा।
1: आपने आज मुझे मृत्यु से बचाया है, इसलिए अब आपको छोड़कर मेरी जीवित दशा में कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता।
0: भाग्य में लिखी वस्तु मिल ही जाती है। हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु उसे मिल ही जाती है।
2: अगली सुबह राजा ने पूरा वृतांत सुना। अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों एवं दास दासियों से युक्त करके 1000 गांवों के साथ अत्यंत आनंद के साथ प्राप्त वैध को सौंप दिया। राजा ने उसे युवराज का सम्मान दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मनुष्य को भाग्य का लिखा मिल ही जाता है, और इसी कारण मैं लघु पत्नक के साथ यहाँ आ गया हूँ।
3: आप सबका इस तालाब के किनारे स्वागत है। आपका जो धन नष्ट हुआ उसके लिए चिंतित न हो। भाग्य में यदि उपभोग का सुख नहीं है तो वह संभव नहीं होता। जैसे सौमिलक धन खो देता था।
2: सौमिलक धन खो देता था, वो कैसे मंत्र?
3: तो सुनो, एक नगर में सौमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। वो अनेक प्रकार के रंगों और चित्रकारियों से युक्त रेशमी तथा राजाओं के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का निर्माण करता था, परंतु
4: प्रिय, मैं अनेक प्रकार के चित्रकारियों से युक्त रेशमी वस्त्रों के निर्माण में निपुण होने पर भी उतना धन नहीं कमा पाता, क्यों?
5: सही कहते हैं आप। दूसरे जुलाहे जो केवल मोटे वस्त्रों के निर्माण में ही कुशल थे, वे हमसे अधिक समृद्ध हैं।
4: मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि ये जगह मुझे रास नहीं आ रही। मुझे दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहिए।
5: हे स्वामी, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। विदेश जाने पर धन लाभ भी हो, ये सारी मिथ्या बातें हैं। मनुष्य चाहे आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में चला जाए, अथवा पृथ्वी के ही छोर तक चला जाए, किंतु जो वस्तु पहले नहीं मिली वो कभी मिलेगी भी नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं पर कोई उद्योग।
4: प्रिय, तुमने ठीक नहीं कहा। कार्य की सिद्धि उद्योग से होती है, केवल मनोरथ मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। मैं विदेश अवश्य जाऊंगा।
6: ऐसा निश्चय करके सोमिलक ने वर्धमान नामक नगर में जाकर 3 वर्ष तक कड़ी मेहनत की और 300 स्वर्ण मुद्राएं कमाकर लौटा। रास्ते में एक जंगल आया, वहां विश्राम के लिए रुका, परंतु उसका धन चोरी हो गया। वो पुनः शहर गया, धन कमाया, पर अत्यधिक सावधानी के बावजूद उसका धन फिर चोरी हो गया। चौथी बार उसने देखा, उसकी ओर देखकर 2 विचित्र आकृति के पुरुष कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसने ध्यान से सुना।

0: हे कर्ता, क्या तुम भली भांति नहीं जानते हो कि सोमिलक के भाग्य में भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त धन नहीं है? फिर भी आपने इसको 30 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे दी?
1: हे कर्मन, उद्यमी पुरुषों को उनका अंश देय होता ही है, पर इसके प्रारब्ध का अंतिम निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम मुझे व्यर्थ ही उपालंभ दे रहे हो।
2: नहीं, मेरे श्रम के फल को कोई नहीं छीन सकता। मैं गठरी को संभाल कर रख लेता हूं। अरे ये क्या, अरे ये गठरी तो फिर खाली है। हाय हाय हाय हाय, अब क्या होगा? मेरे निर्धन रहकर जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है? हाय हाय हाय हाय, मैं स्वट वृक्ष की शाखा में खुद को बांधकर आत्महत्या कर लूंगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा।
0: अरे

0: नहीं। सोमिलक, इस प्रकार का साहस न करो। तुम्हारे धन को चुराने वाला मैं हूं। भोजन और वस्त्र से अधिक धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम घर लौट जाओ, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हां, चाहो तो कोई और वर मांग लो।
1: सच, यदि ऐसा है तो मुझे बहुत सा धन दे दो।
0: पर तुम उसे भोग नहीं पाओगे।
1: यद्यपि धन मेरे भाग्य में नहीं है, फिर भी मेरे पास धन होना चाहिए। धनी व्यक्ति की लोग सेवा करते हैं।
0: कैसे?
1: किसी नगर में तीक्ष्ण विषाण नामक एक सांड रहता था। मद के गर्व से उसने अपने समूह का साथ छोड़ दिया था और एकाकी नदियों के किनारे उगी हुई मरकत मणि के समान हरी हरी कोमल घास को चरते हुए नदियों के तट को अपने सींग से गिराया करता था। इस प्रकार स्वच्छंद विचरण करते हुए वो धीरे धीरे जंगली हो गया और वन में निवास करने लगा। उसी वन में प्रलोभक नाम का एक श्रृगाल भी रहता था। एक दिन वो श्रृगाल अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर सुखपूर्वक बैठा हुआ था। इसी बीच तीक्ष्ण विषाण नाम का वो सांड जल पीने के लिए नदी तट पर आ गया। उसके लटकते हुए वृहत मांसल अंशों को देखकर श्रृगाली ने कहा,
2: स्वामी देखो, इस वृषभ पर मांस के टुकड़े जिस प्रकार से लटके हुए हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि कुछ ही पलों में ये गिर जाएंगे। आपको इस वृषभ का अनुगमन करना चाहिए।
3: प्रिय, कौन जानता है ये मांसपिंड गिरेंगे या नहीं? तुम मुझसे व्यर्थ ही परिश्रम करवा रही हो। यहाँ तुम्हारे साथ रहकर मैं जल पीने के लिए आने वाले चूहों को पकड़कर खाया करूंगा। मेरे विचार से सांड के पीछे भागना उचित नहीं।
2: तुम उद्यमी नहीं हो। थोड़ा बहुत जो पा जाते हो उसी से संतोष कर लेते हो। कायर और आलसी पुरुष ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, मैं चूहों का मांस खाते खाते ऊब चुकी हूँ। अरे देखो देखो, मांस के ये टुकड़े गिरने ही वाले हैं। तुम्हें मेरी बात टालना नहीं चाहिए।

0: पत्नी की बात को श्रीगाल टाल नहीं पाया। वृषभ के पीछे घूमते हुए बहुत समय व्यतीत कर दिया, किंतु मांसपिंड नहीं गिरे। 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करके वो श्रीगाल लौट आया। उसे लगा वो मांसपिंड कभी नहीं गिरेंगे।
1: देखो सोमिलक, यदि तुम्हें धन प्राप्ति की इतनी ही इच्छा है तो तुम मेरी बात मानो। तुम वर्धमानपुर जाओ, वहां 2 वणिक पुत्र निवास करते हैं। हाँ, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का नाम उपभुक्त धन। दोनों के स्वभाव को देखो, फिर एक की प्रकृति का वर मुझसे मांग लेना।
2: ये कहकर वो पुरुष अंतर्धान हो गया। सोमिलक उस नगर में जाकर गुप्त धन के घर पहुंचा। उसे देखकर गुप्त धन स्त्री तथा बच्चों को फटकारने लगा। उनकी उपेक्षा की चिंता किए बिना सोमिलक उनके घर में प्रवेश कर बैठ गया। भोजन का समय हो जाने पर अनिच्छा से गुप्त धन ने थोड़ा सा भोजन सोमिलक को भी दे दिया। सोमिलक वहीं सो गया। रात में उसने देखा वही दोनों पुरुष वहां बातें कर रहे थे।
1: हे कर्ता, क्या आपने इस गुप्त धन के भाग्य में कोई अतिरिक्त व्यय नियत किया था जो इसने सोमिलक को भोजन के लिए दिया? ये तो अनुचित है।
3: हे कर्मन, इसमें मेरा कोई योग नहीं। पुरुष को उसके लाभ तथा हानि को प्रदान कर देना मेरा कर्तव्य है। मेरे दिए हुए फल का परिणाम आपके अधीन है।
2: अगले दिन उठकर सोमिलक ने देखा गुप्त धन आंत्रशोथ से पीड़ित है। इस कारण उस दिन गुप्त धन ने भोजन नहीं किया। फिर उस घर से निकलकर सोमिलक उपभुक्त धन के घर गया, जहां उसका विशेष

स्वागत और सम्मान हुआ। उपभोग धन द्वारा प्रदत्त वस्त्र और भोजन से सम्मानित होकर सौमिलक एक भव्य शैया पर सो गया। रात्रि के समय उसने पुनः उन दोनों पुरुषों को देखा।

0: किया है वह मेरा कर्तव्य था। इसका परिणाम अब आपके हाथ में है।
1: प्रातः होते ही एक राज कर्मचारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और उपभोक्त धन के हाथ में दे दिया। ये घटना देखकर सौमिलक ने मन में सोचा कि संचय रहित उपभोक्त धन ही श्रेष्ठ है।
2: धनोपार्जन की सार्थकता तो तभी होती है जब व्यक्ति उसका उपभोग करे तथा दान आदि से दूसरों को उपकृत करे। हे विधाता पुरुष, मुझे उपभुक्त धन की प्रकृति चाहिए।
1: इस कथा को सुनाकर मंथरक ने कहा,
3: मित्र हिरण्यक, भोग को प्रधान मानकर तुम्हें धनहानि के विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी धन के विद्यमान रहने पर भी उसे अविद्यमान ही मानना पड़ता है। धन को पाकर दान देना चाहिए अथवा उपभोग में लाना चाहिए, कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। दान के समान कोई दूसरी निधि नहीं होती। भगवान शिव के पास धन के नाम पर केवल वृषभ नंदी हैं, फिर भी वो परमेश्वर कहलाते हैं। तुम उस खोए हुए धन की चिंता छोड़ दो मित्र।
4: हाँ मित्र हिरण्यक, मंत्रक की पुरुषवाणी पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा है। प्रिय बोलने वाले तो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय और उचित बोलने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं।
5: मित्र मंथरक, मुझे लगता है आपका कथन सत्य है। अप्रिय होते हुए भी जो हितकारी बातों को कहते हैं वे ही तो वास्तविक मित्र होते हैं।
4: मित्रों देखो, एक हिरण इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। आप सब छुप जाएं, हो सकता है इसके पीछे कोई ब्याद आ रहा हो।
6: हाँ मित्र लघुवत्तक, ये मृग बड़ा ही कातर लग रहा है।
4: हाँ।
6: चलो चलो उसके पास चलते हैं।
4: हाँ चलो।
6: मृगराज, आप भयभीत प्रतीत होते हैं।
7: जी जी, मेरा नाम चित्रांग है। आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। सचमुच मैं भय संत्रस्त हूँ और बड़ी कठिनाइयों से बचकर आया हूँ। आप लोग मुझे अपनी शरण में लेकर कोई ऐसा स्थान बताएंगे जहाँ वो व्याध ना पहुँच सके।
4: मित्र, वो बहेलिया पर्याप्त मांस पिंडों को लेकर अपने घर चला गया है।
7: अच्छा,
4: अब कोई भय नहीं है। आप निश्चिंत हो सकते हैं।
1: उस दिन से चारों कौवा, कछुआ, चूहा और मृग तालाब के किनारे मनोविनोद करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन गोष्ठी में चित्रांग नहीं आया, सभी चिंतित हो गए।
5: मित्रों, क्या बात है, आज मित्र चित्रांग नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया?
4: शेर चीते के हाथ तो नहीं लग गया, या फिर किसी शिकारी के जाल में?
6: मित्र लघुपतनक, हिरण्यक और मैं उसे ढूंढने में असमर्थ हैं। हम तेज नहीं चल सकते, इसलिए तुम जाकर उसे खोजने का प्रयास करो।

0: भद्र, ये तुम्हारी क्या दशा है? ये कैसे हो गया?
1: मित्र, अब तो मेरा मृत्यु काल आ गया है। अच्छा हुआ मित्र आप आ गए। प्राणांत काल में मित्र का दर्शन सुखकारक होता है।

0: अगर अगर मैंने कभी कभी भी कोई अप्रिय वचन कहा हो तो मुझे मुझे क्षमा कर देना मित्र।
1: भद्र, हम लोगों के रहते आपको इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी हिरण्यक को लेकर आता हूं, आप आशान्वित रहें।
0: अच्छा।
1: अरे मित्र, ये अच्छा नहीं हुआ।
2: क्यों, क्या हुआ? क्या वहां बहेलिया आ गया?
1: नहीं, परंतु ये मंत्रक भी यहाँ चला आ रहा है। अरे ये उचित नहीं है। अगर अभी वो व्याध आ गया मैं तो आकाश में उड़ जाऊंगा, तुम विवर्ण में घुसकर आत्मरक्षा कर लोगे, चित्रांग भी तेजी से भाग जाएगा। परंतु ये मंत्रक धीरे धीरे चलकर अपने आप को कैसे बचा पाएगा?
3: क्या करूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया। मित्र के विपत्ति की सूचना के बाद मैं कैसे रहता?
4: अभी वो चारों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वही हुआ जिसका डर था, व्याध आ गया। सभी बच गए पर मंत्रक कछुआ व्याध की पकड़ में आ गया। उसे धनुष की नोक पर टांग कर घर की ओर चल पड़ा। तीनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी तीनों ने एक उपाय किया। वो चित्रांग बहेलिए के मार्ग में जाकर तालाब के किनारे निर्जीव भूमि पर लेट गया। लघुपतनक उसके सिर पर बैठ गया। उसे देख व्याध मंत्रक को वहीं छोड़कर हिरण लेने दौड़ पड़ा। इसी बीच हिरण्यक ने मंत्रक के पाश को काट दिया। मंत्रक वहां से भाग निकला। बहेलिया जब चित्रांग हिरण के पास पहुंचा तो वो भी तेजी से भाग गया। बेचारा व्याध सिर पीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उस दिन से वो चारों मित्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इन प्रसंगों से हमें शिक्षा मिलती है कि विचारवानों को परस्पर मित्रता रखना चाहिए और मित्र के लिए सदैव प्रेम भाव रखना चाहिए। श्रोतागण, यहीं पर हमारा द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम आपको काकोलुकियम की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने पंचतंत्र की 8वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये आकाशवाणी

0: मध्य प्रदेश है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, और 1:45 पर सुना जा सकेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होंगे। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमता कार्यसमूह की बैठक को कल वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की आज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे, उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। वहीं मौसम में प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। खजुराहो में कल सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट की खबर में, आईपीएल में आज अहमदाबाद में शाम 7:30 से गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, एक बज चुके हैं। अब सुनिए महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान है।

आकाशवाणी जबलपुर द्वारा प्रसारित आज के महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, आज हम आपसे हमारे समाज, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। सखियों, हमारा भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, खान पान बदलता है, लेकिन हमारे दिलों को जोड़ने वाली संस्कृति कभी नहीं बदलती है। इसी सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने और संवाद के माध्यम से विकास का संदेश सभी तक पहुंचे, इसी उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। सखियों, यह दिन हमें सिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियां, परंपराएं और विचारधारा किसी भी समाज की शक्ति होती है, कमजोरी नहीं। जब संवाद होता है तब दूरियां मिटती हैं, जब संस्कृतियां मिलती हैं तब विकास के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। सखियों, संवाद के द्वारा जब हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं तब एक शक्तिशाली समाज का निर्माण होता है, और जब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, सम्मान देते हैं और आपस में बातचीत करके एक दूसरे के विचार साझा करते हैं तब एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता है। आज के समय में जब लोग अधिक व्यस्त जीवन जीते हैं तो एक दूसरे से मिलना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में गलतफहमी होना संभव है। सखियों, तब संवाद ही एक ऐसा माध्यम होता है जो गलतफहमी को दूर करके दिलों को जोड़ता है। और सखियों, यही संवाद हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे भारत में तो ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। सखियों, जब अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं तब समाज में नई संभावनाएं, नए विचारों का जन्म होता है। सखियों, संवाद और संस्कृति में हम बहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक महिला ही परिवार को संस्कार देती है, घरों में मनाए जाने वाले तीज त्योहार परंपराओं को जीवित रखती है। घर में बोली जाने वाली भाषा से लेकर रीति रिवाजों तक हर संस्कृति की पाठशाला एक माँ की गोद ही तो होती है। सखियों, हम बहनें ही परिवारों को जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने का काम बखूबी करती हैं, समाज को संवेदनशील बनाती हैं, भावनात्मक रिश्तों को बढ़ाती हैं और समाज में विकास की दिशा तय करती हैं। सखियों, अलग अलग संस्कृति में बसी एकता की भावना को आगे बढ़ाएं, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग सुर मिलकर एक मधुर संगीत तैयार हो जाता है, और संगीत की इसी मधुरता का एहसास करते हैं इस गीत को सुनकर, जिसे हमने लिया है फिल्म कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस गीत को सुरों की माला में पिरोया है के हरिहरन ने।

0: कहे। सखियों, जब हम संवाद और विकास की बात करते हैं तो संवाद का एक माध्यम वार्ता भी है, जिसे आज के कार्यक्रम में घरेलू हिंसा अधिनियम विषय के साथ शामिल किया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मयूर शिखा। तो सखियों, सुनते हैं ये वार्ता। विषय है घरेलू हिंसा अधिनियम।
1: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार में राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सम्मिलित है। इस लाइफ में लाइफ विद डिग्निटी है। महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा उनके गरिमा के साथ जीने के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने वाली है। अतः भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए

सन 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में लागू हो गया। कानून का प्रभाव उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे इस पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से आज हम अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू हिंसा क्या है, पीड़ित या व्यथित व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है, प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट जिसे पीड़ा पहुंचाने वाला कहते हैं वह कौन है, पीड़िता की सहायता करने वाली एजेंसी सेवा प्रदाता कौन है और उसके क्या कार्य हैं, प्रोटेक्शन अधिकारी या संरक्षण अधिकारी क्या हैं, इनकी क्या भूमिका है, ये पीड़ित को राहत दिलवाने में क्या भूमिका निभाते हैं, साथ ही न्यायालय की क्या भूमिका है। पहले बिंदु पर हम ध्यान देते हैं कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य आते हैं जो कि अधिनियम की धारा 3 एवं नियम के अनुसार बतलाए गए हैं। शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक या भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत मारपीट, थप्पड़, ठोकर, दांत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना, धकेलना, किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना आता है। इसी प्रकार लैंगिक हिंसा में प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का कार्य, फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अश्लील साहित्य तस्वीर सामग्री देखने के लिए विवश करना, बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार। मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा में अपमान, गालियां, चरित्र हनन, पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना, दहेज इत्यादि न लाने पर अपमानना, कस्टडी में बालकों को जो शिक्षा व्यवस्था है उसे देने से रोकना, महिला को नौकरी में जाने से रोकना, किसी व्यक्ति से मिलने जुलने के लिए रोकना आदि, ये मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आने वाली घरेलू हिंसा है। इसी प्रकार आर्थिक हिंसा के अंतर्गत जो बच्चे अनुरक्षण में हैं महिला के, उसके मेंटेनेंस के लिए धन उपलब्ध न कराना, महिला को रोजगार चलाने से रोकना, विघ्न डालना, अनुमति न देना, जो वेतन उसे मिलता है वह उससे ले लेना, घर से बाहर निकलने को मजबूर करना, ये सभी चीज़ें आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। कानूनी पीड़िता की सहायता के लिए एक संरक्षण अधिकारी की व्यवस्था अधिनियम धारा 8 और 9 में देता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक जिले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करती है, जो कि हिंसा की शिकार महिला को संरक्षण और सहायता देती हैं। अब हम देखते हैं कि महिला को सहायता देने वाली संरक्षण अधिकारी के कार्य क्या हैं। हिंसा के पूरे विस्तार को हम डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में DIR कहा जाता है। महिला से पूछकर या घटना स्थल पर जाकर या किसी को भेजकर घटना की स्थानीय सीमा में आने वाले थाने में इस रिपोर्ट को प्रेषित करने का कार्य संरक्षण अधिकारी करती है। व्यथित व्यक्ति को संरक्षण आदेश की अगर आवश्यकता है तो जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें दिए गए अनुसार स्थानीय सीमा के अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषण करती है। न्यायालय प्रकरण में प्रथित व्यक्ति की सहायता के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कराती है। सेवा प्रदाताओं की सूची तैयार करके रखती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर में ये सहायताएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें विधिक सहायता, परामर्श सहायता, आश्रय प्रदाता, चिकित्सा सुविधा। ये जो सेवा प्रदाता हैं, ये अधिनियम की धारा 10 और नियम 11(1) के पालन में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन करते हैं। एवं सेवा प्रदाता कौन हो सकता है, वह कोई भी शैक्षिक संगठन हो सकता है, कंपनी, सोसाइटी हो सकती है, जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। व्यथित व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार सेवा प्रदाता संरक्षण अधिकारी के निर्देश अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि आश्रय उपलब्ध कराना एवं जिस आश्रय में महिला को रखा गया है उसकी सूचना थाने को एवं मजिस्ट्रेट को देना। अगर ऐसी हिंसा है जिसमें महिला के चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता है तो चिकित्सा रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी को सौंपना और इस रिपोर्ट को जो DIR है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, उसके साथ स्थानीय पुलिस थाने को सौंपा जाता है। विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट को एक प्रति संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी और व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी। जो सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी महिलाओं की सहयोग में कार्य करते हैं उन्हें विधिक संरक्षण प्राप्त है। उनके सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य के लिए उनके खिलाफ कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं होगी। इस घरेलू हिंसा के मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य एवं अधिकारिता के बारे में भी इस अधिनियम में बतलाया गया है। घरेलू हिंसा की घटना घटित होने पर किस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कार्रवाई होगी, इसके बारे में अधिनियम कहता है कि व्यथित व्यक्ति

आय या अस्थायी रूप से जहाँ निवास करता है, कारोबार करता है या नियोजित है, या जहाँ मोटिव उत्पन्न हुआ है, उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट क्लास वन के यहाँ कार्यवाही होगी और मजिस्ट्रेट के यहाँ की कार्यवाही की एक समय सीमा भी होगी। जिस दिन आवेदन प्राप्त होता है उसके 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई की जाएगी। प्रथम सुनवाई से जो निपटारा है वह 60 दिन के अंदर होना है। आवेदन प्राप्ति की सूचना प्रत्यर्थी, रिस्पोंडेंट या जो व्यक्ति पीड़ा पहुंचा रहा है उसको 2 दिन या युक्तियुक्त समय पर पहुंचाना होता है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यथित को दिया जाने वाला अनुतोष। इन अनुतोष के रूप में परामर्श सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदान किए जाने हेतु आदेश देगा, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता हेतु निर्देश देगा। कोई ऐसी महिला हो सकती है या उस महिला की रिश्तेदार हो सकती है जो घटनास्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र कर मजिस्ट्रेट को अपने आदेश के लिए सहयोग प्रदान करे। जो संरक्षण अधिकारी होता है, धारा 18 इस अधिनियम द्वारा व्यथित को प्रदान किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिलीफ है। संरक्षण आदेश धारा 18 में दिया गया है, यह इस अधिनियम द्वारा व्यथित को प्रदान किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिलीफ है। व्यथित के आवेदन पर सूचना पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है, घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, तो व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित करेगा और रिस्पोंडेंट को इस तरह के कार्य करने से रोकेगा, जैसे कि घरेलू हिंसा के कोई कार्य को करने से रोकना, घरेलू हिंसा में सहायता पहुंचाने या दुष्प्रेरण करने से किसी को रोकना, व्यथित के कार्यस्थल या अन्य स्थान पर जहां वह आती जाती है वहां प्रत्यर्थी को प्रवेश करने से रोकने का आदेश, व्यथित व्यक्ति से किसी भी माध्यम से संपर्क करने से रोकना, जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, दूरभाष आदि के द्वारा भी। इसी प्रकार धन संबंधी व्यवस्था को प्रभावित करने से रोकना, अगर संयुक्त लॉकर है या बैंक लॉकर है, स्त्री धन है, उसकी संपत्ति को प्रभावित करने से रोकना, या फिर ऐसा कोई आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार किसी अन्य प्रकार के निर्देश देने का भी मजिस्ट्रेट को अधिकार है। अब इसके अलावा एक और आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, निवास आदेश। व्यथित को निवास स्थान से बेकब्जा करने से रोकने का आदेश, संयुक्त निवास से प्रत्यर्थी को हट जाने का आदेश, व्यथित के निवास स्थान में प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदारों को प्रवेश करने से रोकने का आदेश, व्यथित के निवास स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने से रोकने का आदेश, व्यथित घटना के पूर्व जहां रह रहा था वैसी ही व्यवस्था रिस्पोंडेंट द्वारा अन्यत्र करने का आदेश, व्यथित का स्त्री धन या अन्य मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी की वो हकदार है उसे वापस लौटाने का आदेश, व्यथित की संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार शर्त लगाने वाला आदेश, जैसे कि संतान अगर विद्यालय जाता है तो वहां पर प्रत्यर्थी को मिलने से रोकना, या फिर प्रत्यर्थी मिलेगा तो व्यथित की उपस्थिति में ही मिल सकेगा। अब मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में अधिनियम कहता है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले थाने के प्रभारी अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज को व्यथित को संरक्षण देने वाले आदेश के क्रियान्वयन में सहायता का निर्देश देते हुए आदेश पारित करेगा। देखिए, कोई भी जो कानून है उसका महत्व तभी है जब अगर उसको भंग किया जाए तो उसके लिए कुछ पेनाल्टी हो, तो इसलिए संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जो दिए जाते हैं अगर उसको रिस्पोंडेंट या प्रत्यर्थी भंग करता है तो उसको 1 वर्ष का साधारण या सक्षम कारावास तथा 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकेगा। अगर संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्य करने में विफल रहता है तो उसे भी इसी तरह 1 वर्ष का कारावास या 20,000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण आदेश भी हैं, जैसे प्रतिकर आदेश जो धारा 22 में वर्णित है। अगर व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है किसी मानसिक यातना या भावनात्मक कष्ट के लिए तो प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देने का आदेश भी मजिस्ट्रेट क्लास 1 पारित कर सकेगा। इसी प्रकार अभिरक्षा का आदेश है, व्यथित की संतान की कस्टडी व्यथित को दिए जाने हेतु आदेश। इसी प्रकार जो सबसे एक महत्वपूर्ण आदेश है वह है अंतरिम या एक पक्षीय आदेश। सामान्यतः दोनों पक्षकारों को सुनने के उपरांत आदेश पारित होता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट को घटना की परिस्थितियां देखकर ऐसा लगता है कि व्यथित की सुरक्षा के लिए बिना रिस्पोंडेंट को सुने आदेश देना आवश्यक है तो इस तरह का एक पक्षीय आदेश भी मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 23 के अनुसार पारित कर सकेगा। अब अगर मजिस्ट्रेट के इन आदेशों से दोनों में से कोई भी पक्ष व्यथित होता है तो इसमें अपील के अधिकार के लिए धारा 29 में प्रावधान है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति या तामीली के 30 दिन के अंदर सेशन न्यायालय में इसकी अपील हो सकेगी। इस तरह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
एक ओर पीड़िता को अन्याय

0: विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था देता है। इस व्यवस्था के अभाव में महिलाएं घर की चार दीवारी में हिंसा सहने के लिए विवश हो जाती थी और उनके इस कष्ट का अंत उनके जीवन के साथ होता था। वहीं दूसरी ओर हिंसा करने वालों को सावधान करता है कि ऐसा करने पर उन्हें किस तरह की विधिक परेशानी एवं दंड को भुगतना होगा। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रदान करने में यह कानून अत्यंत उपयोगी है।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था घरेलू हिंसा अधिनियम, जानकारी दे रही थी डॉक्टर मयूर शिखा। सखियो, हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप अवश्य ही लाभ लेंगी। अब रुक करते हैं अगले विषय का। सखियो, 21 मई का दिन हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध का। सखियो, आतंकवाद केवल हिंसा नहीं बल्कि मानवता पर हमला है। आतंकवाद के द्वारा किसी भी देश या समाज में भय, अशांति और विभाजन को विस्तार देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हमारा देश हमेशा प्रेम, शांति और भाईचारे के मार्ग पर आगे बढ़ा है। सखियो, आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि किसी भी प्रकार की हिंसा, कट्टरता और नफरत को अपने समाज में स्थान नहीं देंगे। सखियो, यहाँ हम बहनों की भूमिका और दायित्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से एक संस्कारी समाज की नींव घर से ही रखी जाती है, जिसके लिए हम बहनें बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और छोटी बड़ी हर बात सिखाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, और यही सीख उस बच्चे का जीवन तय करती है कि समाज में वह कैसा व्यवहार करेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें हमेशा यही सीख देते हैं कि बच्चों के सामने कभी भी आपसी मतभेद या किसी की बुराई की बातें मत करो, बच्चे के कोमल मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सखियो, रिश्तों को आपसी समझ, शांति और सौहार्दता से मजबूत बनाएं और मानवता के मूल्यों को समझकर अच्छे समाज का निर्माण हम सब करें। सखियो, अच्छे समाज के निर्माण के लिए मन का अच्छा होना आवश्यक है, और मन को अच्छा बनाने के लिए संगीत से बढ़कर और क्या साधन हो सकता है। तो सखियो, सुनते हैं मधुर गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मौसम से, और इस गीत को गाया है भूपिंदर और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

देखियो, अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के सबसे युवा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश को तकनीकी और संचार क्रांति की नई दिशा दी। कंप्यूटर, दूरसंचार और युवाओं को आधुनिक विचार से जोड़ने का जो सपना उन्होंने देखा था, वही सपना आज विकसित भारत की आधारशिला बना हुआ है। सखियो, राजीव गांधी जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि किसी भी देश के विकास का मार्ग शिक्षा, तकनीक और संवाद से होकर गुजरता है। उनके इसी संदेश को विकास की नींव मानते हुए उनकी पुण्यतिथि पर हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रंग अलग हों, रूप अलग हों, फिर भी दिलों का मेल रहे। भाषाएं चाहे जितनी बदलें, अपनेपन का मेल रहे। सखियों, हम सब मिलकर संवाद और विकास के साथ सांस्कृतिक विविधता को अपनाएं, आतंकवाद का विरोध करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। सखियों, आज के महिला सभा कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। सुनते रहिए आकाशवाणी और अब अनुमति दीजिए अपनी सखी पूर्णिमा को

0: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: कवि शिव राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: पानी की हर बूंद है अनमोल,
5: बहने ना दें इसे बेमोल,
4: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
5: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: नसनसनी नसनसनी नसनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति। आज कलाकार हैं तिलोत्तमा विश्वकर्मा, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये लंगोरिया।

और अब हम आपको एक बन्नी सुनवाना चाह रहे हैं, स्वर एक बार फिर तिलोत्तमा विश्वकर्मा का।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने ये बन्नी गीत सुना और इसमें आवाज़ थी तिलोत्तमा विश्वकर्मा की, और इसी बन्नी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय हुआ है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में एक बार हम आपको पुनः सुनवा रहे हैं जबलपुर केंद्र की ही प्रस्तुति। अभी कलाकार हैं मोनल सावरकर, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली रचना एक गीत के रूप में।

और कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सुनने जा रहे हैं मीराबाई का ये भजन मोनल सावरकर के स्वर में।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था और कलाकार थी मूणल सावरकर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार भोपाल, सुबह का नमस्कार खुशगवार हर बार, नई जानकारियां शहर और देश दुनिया की, गूंजेंगी स्वर लहरियां नए पुराने गीतों के साथ। सुबह 7:20 पर सुनिए हर रोज नमस्कार भोपाल।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं भागम भाग फिल्म में कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान को। प्रीतम ने इस गीत की धुन बनाई थी और बोल थे समीर के।

और अब आ रहा है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोलों से सजा हुआ वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, फिल्म का नाम गिरफ्तार।

0: और गिरफ्तार फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली लौटकर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान भारत की कृषि नीतियों की वैश्विक स्वीकृति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री क्वोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। इसमें उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने उस युद्ध में अपनी सेवाएं दी थीं। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। इस तरह इस साल RTE के तहत मुफ्त दाखिला पाने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,17,000 से ज्यादा हो गई है। भोपाल की चर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने मामले की CBI जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा के परिजनों से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जरूरत पड़ने पर शव को दिल्ली एम्स भेजने की बात भी कही। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो सबसे ज्यादा तपा, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया और 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के भिंड, दतिया और निवाड़ी समेत 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। IPL में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। कल रात के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा बनाए रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कल आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी के दर्शन पूजन कर हवन अनुष्ठान किया। झाबुआ के भावेश सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर जान बचाने के लिए राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के भौती में कल राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक दुकानें स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित

0: किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: It is ironic that Pakistan with its long
3: time... ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
2: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक

0: राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4th स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदान

0: वनों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। साथ दिया है बाबुल सुप्रियो ने, समीर के बोल नदीम।

और भीगी पल के फिल्म का ये गीत आपने सुना था किशोर कुमार का गाया हुआ, एन जी हशमत ने इसे बोल दिए थे और जुगल किशोर तिलकराज ने संगीत तैयार किया था। सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये सभी दोस्त, रामचंद माखीजा का, फिर शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, बीबी स्वाति और पूरा माखीजा परिवार बनियापारा धमतरी से इस गीत को सुनना चाहता था। अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और पंजाब राव निम्बालकर, साथ में है संदीप पाटिल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दतरंगी से भागवत वर्मा, गुलाबदास, मानिकपुरी लेवई से रंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छिनपुर से विश्वनाथ साहू और मवाली सिंगारपुर से सालिक बुजारी।

ये गीत आपने सुना युवराज फिल्म से, अलका याग्निक और जावेद अली ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी। गुलजार के बोल थे और एआर रहमान की धुन थी। सुनना चाहा था ग्राम फांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत से हैं प्रमोद कुमार और सौरभ डूडी। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू और तासु। मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा ने कोलार रोड भोपाल।

रविंद्र जैन के गीत और संगीत को आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। फिल्म का नाम है राम भरोसे और इस गीत को और इसके बाद वाले गीत को सुनवाने के लिए हमारे जिन सभी दोस्तों ने चिट्ठियां लिख भेजी है उन सभी के नाम आपको बता दें। संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया, इन्होंने घंटा घर चौक खंडवा से हमें खत लिख भेजा था। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर ने चिट्ठी लिखी थी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा, साथ में हैं झावेंद्र कुमार, राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने सुनना चाहा है हमारे कार्यक्रम के इस अगले गीत को। डोंगरगांव जिला जिला छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और ये अगली और आखिरी चिट्ठी है उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु तासु, विकास शर्मा, ज्योति पुरुषवानी, मीना, नीतू सिंह और प्रतीका चतुर्वेदी की। इन्होंने हमें ये झारखंड से लिख भेजा था। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत में आप सुन रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के बोलों को, रवि के संगीत निर्देशन में महेंद्र कपूर और लता जी का गाया हुआ ये गीत है। फिल्म का नाम है भरोसा।

0: और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 होने को हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम

0: में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री कोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। भोपाल की चर्चित मॉडल त्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। और मौसम में प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, निवाड़ी समेत प्रदेश के 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। इस सभा के समापन से पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। ग्राम लक्ष्मी आप सुन सकते हैं 7:21 पर। और सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 8:00। आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी रात 10:00। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उल्हास कासलकर का राग यमन कल्याण में ख्याल गायन आप सुन सकते हैं। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। आप शाम 5:00 से हमारे प्रसारण को पुनः मीडियम वेव पर सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए

0: एक तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विगत दिवस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जबलपुर में किया गया
1: और इस प्रतियोगिता के विजेता रहे हमारे दोस्त पीयूष चौधरी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पीयूष, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे कार्यक्रम में?
2: बहुत बहुत धन्यवाद अंकित और रश्मि। मैं युवाणी कार्यक्रम को रेगुलरली फॉलो करता हूं और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: वाह पीयूष, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आपसे आज के दो प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाका किस देश के मूल निवासियों का पारंपरिक नृत्य है? इसी के साथ आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म सितारे जमी पर से और आवाज दी है सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन और दिव्या कुमार ने।

0: दोस्तों, कभी सोचा है भीड़ का हिस्सा बने रहे तो हम क्या पाएंगे? नए रास्तों पर चलने से ही तो पहचाने जाएंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, और मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो बड़ी ही गलत बात है।
0: दोस्तों, जब एक बार एक मशहूर पेंटर से पूछा गया कि उनकी सबसे बेहतरीन पेंटिंग कौन सी है, तब उन्होंने एक खाली कैनवस की तरफ इशारा किया और कहा, ये, क्योंकि इसमें अभी संभावनाएं अनंत हैं। वाह अंकिता, कितनी गहरी बात है। दोस्तों, हम और आप भी उस खाली कैनवस की तरह ही तो हैं। ज्यादातर लोग वही पुरानी तस्वीर बनने की कोशिश करते हैं जो सदियों से चली आ रही है, वही 9 to 5 जॉब वाले सेफ रास्ते।
1: पर कुछ लोग होते हैं जो किसी बनी बनाई तस्वीर का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद एक नया मास्टरपीस तैयार करते हैं, और ऐसे ही जुनून का नाम है स्टार्टअप।
0: जी हाँ दोस्तों, जैसे उस पेंटर ने खाली कैनवस में भविष्य देखा, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर मुश्किलों में मौका देखता है। स्टार्टअप एक नया और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होता है जो हमारी प्रॉब्लम्स का एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। दोस्तों, हमारे बीच से कई लोगों ने वही सदियों पुरानी रैट रेस का हिस्सा बनने के बजाय अपनी रेस खुद डिजाइन करी, और आज दुनिया उन्हें सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जानती है।
2: सही कहा रश्मि, और इसी बदलाव का समर्थन देने के लिए सरकार स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत फंडिंग और टैक्स बेनिफिट से युवाओं को स्टार्टअप की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया इंक्यूबेशन सेंटर्स, मुद्रा लोन और अटल इनोवेशन मिशन जैसे प्रयासों से सपनों को पंख दिए जा रहे हैं।
1: लेकिन दोस्तों, स्टार्टअप रातों रात खड़ा नहीं होता, इसके लिए डेली बेसिस पर कुछ आदतें अपनानी होगी।
0: जैसे ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज को क्यों और कैसे के नजरिए से देखें, क्योंकि हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है।
2: और लर्निंग और नेटवर्किंग, नए स्किल्स, डिजिटल टूल्स और मार्केट ट्रेंड को समझें। साथ ही ऐसे लोगों से मिलिए जो आपके विजन को समझे और उसे और बेहतर बनाए।
1: और साथ ही एक्सपेरिमेंट और रेजिलियंस, एक्सपेरिमेंट करें और फेलियर से डरे नहीं, बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह लीजिए।
0: दोस्तों, जो चली आ रही है सदियों से, उस लकीर को मिटाकर तो देखो।
1: दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, बस एक कदम उठाकर तो देखो।
2: क्योंकि किनारे पर खड़ी कश्ती हमेशा महफूज ही रहती है, पर कश्तियाँ किनारों के लिए नहीं, लहरों से लड़ने के लिए बनती है।
0: इसी के साथ आइए शामिल करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हिचकी से ये गीत।

0: दोस्तों, कभी-कभी इतिहास एक ऐसा दीपक जलाता है जिसकी लौ पीढ़ियों तक रास्ता दिखाती है, और हिंदी साहित्य के आकाश में ऐसे ही एक दीपक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस तरह माली बिखरे हुए पौधों को तराशकर एक सुंदर उपवन बना देता है, वैसे ही हिंदी साहित्य के बगीचे को संवारने वाले शिल्पकार थे आचार्य द्विवेदी।
0: आचार्य द्विवेदी ने भटकती हुई हिंदी भाषा को एक सही दिशा दिखाई और बिखरे हुए शब्दों को विचारों की गंगा में बदल दिया। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी का जन्म 1866 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। साधारण परिवार और सीमित संसाधन होने के बावजूद उनकी जिज्ञासा हमेशा से ही असाधारण थी।
1: आचार्य द्विवेदी बचपन में कई बार दूसरों से किताबें उधार लेकर आते थे और रात भर उनकी हाथ से नकल उतारते थे, ताकि किताब लौटाने पर भी वह उसके अंदर का ज्ञान अपने पास सुरक्षित रख सके।
0: उन्होंने हमेशा स्वाध्याय को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी पर महारत हासिल की। आचार्य द्विवेदी ने अपने करियर की शुरुआत रेलवे विभाग में नौकरी से की, लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब वे सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। और 1903 से 1920 तक सरस्वती सिर्फ एक पत्रिका नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य का मार्गदर्शक बन गई।
1: द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैत्री शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे महान साहित्यकार उभरे। उन्हें द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है, एक ऐसा काल जिसमें हिंदी साहित्य को आधुनिकता और सामाजिक चेतना से जोड़ा।
0: 21 दिसंबर 1938 को आचार्य द्विवेदी का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और उनके शब्द आज भी जीवित हैं, हर उस पंक्ति में जो समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी हमें सिखाते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद असीम ऊंचाइयां पाई जा सकती हैं अगर हमारे अंदर सीखने की लगन और समाज के प्रति जिम्मेदारी हो। इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म उरी से शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की आवाज में यह गीत।

0: दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हमने आपसे स्टार्टअप भविष्य को लेकर बात की, जिसमें हमने जाना किस तरह नए बिजनेस सेटअप करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हर क्षेत्र, हर नई सोच और हर नए प्रयास के विकास की ओर ले जाने का कार्य हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
1: अच्छा, अब किस नए प्रयास की बात कर रही हो तुम अंकिता?
2: रुको पीयूष, मैं बताती हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं कौशल उन्नयन के बारे में। आज बदलते परिवेश के कारण हम सभी की लाइफस्टाइल में, काम करने के तौर तरीकों में भी समय के साथ साथ कई बदलाव आए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि। जैसे पहले हाथों से सारे लिखा पढ़ी के काम होते थे, आज टेक्नोलॉजी के चलते कंप्यूटर, मोबाइल फोन के द्वारा हमारे काम और भी आसानी से होने लगे हैं।
0: दोस्तों, कौशल उन्नयन का मतलब ही है अपने काम करने की काबिलियत को और बेहतर बनाना, नई चीजें सीख कर या पुराने काम में सुधार करके खुद को और सक्षम बनाना।
1: इससे युवाओं को रोजगार पाने के और सुनहरे अवसर मिल सकेंगे। साथ ही हर युवा नए स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक सही कदम उठाने योग्य बन पाएगा।
2: और दोस्तों, इसलिए इस दिशा में सरकार के द्वारा कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और डिजिटल ऑनलाइन पहल जैसे कई प्रोग्राम्स।
0: और साथियों, इन कार्यक्रम का सबसे ज्यादा फायदा हम युवाओं को ही होगा। घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमें हमारी स्किल्स को बढ़ाने का मौका जो मिल रहा है, बस जरूरत है इस ओर ध्यान देने की।
2: जी हाँ दोस्तों, और इसलिए हम सभी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने शेड्यूल में से रोज थोड़ा सा समय निकालकर अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं हेशम अब्दुल वाहक की आवाज में फिल्म द गर्लफ्रेंड से यह गीत।

0: साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को जानने का। आज का हमारा पहला प्रश्न था, सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है? इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। इसमें लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था, हाका किस देश के मूल निवासियों का पारंपरिक नृत्य है? इसका उत्तर है, न्यूजीलैंड। दोस्तों, हाका न्यूजीलैंड देश के माओरी समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। ये अक्सर युद्ध, उपलब्धियों या मेहमानों के स्वागत के समय किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के कार्यक्रम की समापन की ओर पहुंच चुके हैं। अगली मुलाकात का वादा करते हुए मैं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता,
1: और मैं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि,
2: और मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष,
1: आपसे अब इजाजत लेते हैं। हम मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नई चर्चाओं के साथ।
0: तब तक दयालु बने,
2: जिज्ञासु बने
1: और दुनिया में अपनी उज्जवल रोशनी बिखेरते रहें।
3: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शुक्री।
1: आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नीति मोहन और पपून के गाए गीत से। तुमको मेरी कसम फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है श्वेता बोथरा ने और संगीतकार प्रतीक वाले।

लीजिए सुनिए द डिप्लोमेट फिल्म का गीत। वरुण जैन, रोमी और अनुराग सैकिया ने इस गीत को गाया है। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत दिया है अनुराग सैकिया ने।

मिस्टर आज़ाद, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। इला अरुण और कुमार सानू ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार बप्पू।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नई रोशनी फिल्म का गीत, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरी संयंत्र मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरी संयंत्र में लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार की रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम त्वरित गति से चल रहा है। अब तक 10,19,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक भोपाल शहर वृत्त में 4,38,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि समाधान योजना के तहत 15 मई तक 29,81,000 बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 3 नवंबर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की गई थी, जो कि 15 मई तक लागू थी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।

0: भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओहो यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

साथियों, गीत तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गीत जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, कभी कभी बहुत ही अपने लगते हैं। कुछ ऐसे ही गीतों को लेकर आए हैं हम आज सदाबहार गीत में। तो आइए सुनते हैं सदाबहार गीत आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 6:11:27। आप हैं इस खूबसूरत से बेहतरीन सफर पर रूपा धवन के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इसी के साथ सुनते हैं पहला गीत जिसे हम शामिल कर रहे हैं पड़ोसन फिल्म से, जो कि लता दीदी के भी दिल के बेहद करीब था।

भाई बद्दूर भाई बद्दूर, अब जाएंगे कितनी दूर। भाई बद्दूर भाई बद्दूर।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सर्वकारेण कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषेधितम्। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावित देशेभ्यः आगच्छद्भ्यः अथवा पारगमनं कुर्वद्भ्यः यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमन्त्रिणः सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वयुते मन्त्रिमण्डले द्वात्रिंशत् जनाः सम्मिलिताः, येषु चतस्रः महिला मन्त्रिणः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य सायम् अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा च तस्य इटली समकक्षीया जॉर्जिया मेलोनी इत्येतौ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर इत्यत्र सहकार्याय स्वकीय प्रतिबद्धतां ज्ञापितवन्तौ। अस्याः परियोजनायाः भूरिशः प्रशंसां कुर्वन्तौ उभौ नेतारौ ऐषमः षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे अस्य उपक्रमस्य प्रगतये आईमेक मन्त्रिस्तरीयगोष्ठ्याः प्रथमायोजने दृढपदक्षेपं स्वीकर्तुं प्रोत्साहितवन्तौ। रोमनगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह आयोजिते संयुक्त संवाददातृ सम्मेलने इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी आईमेक इत्येतं यूरोप मध्य पूर्व भारतदेशान् संयोजयितुं कश्चन महान् आर्थिक सम्पर्क मार्गः वर्तते इति वर्णितवती। तया प्रोक्तं यदस्मिन् व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखला स्थैर्यं दृढीकर्तुं महत् सामर्थ्यं वर्तते। मेलोनी इत्येषा अवोचत् यत् क्षेत्रीयान्तर सम्पर्कस्य सुदृढीकरणार्थं सर्वोपरि प्राथमिकता अस्ति तथा च उभावपि देशौ अस्य वीथिमार्गस्य विकासं दृढतया समर्थयतः। उभावपि प्रधानमन्त्रिणौ पुनरपि प्रोक्तवन्तौ यत् नवोन्मेषः विज्ञानं प्रौद्योगिकी च भारत इटली देशयोः मूलाधाराः सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् इटली देशः स्वस्य विशिष्टाभिकल्पनायै सूक्ष्मता कौशलाय च विश्वविश्रुतोऽस्ति। अपरत्र भारतस्य ख्यातिः विशालतायै प्रतिभायै सुलभ नवोन्मेषाय च वर्तते।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: सर्वकारेण प्रोक्तं यत् कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषिद्धो वर्तते। केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् प्रसाधन सामग्र्यः केवलं मानव शरीरे घर्षणाय सेचनाय प्रोक्षणाय अथवा विकिरणाय च उद्दिष्टाः सन्ति। संघटनेन प्रोक्तं यत् विक्रयण वितरणार्थं प्रसाधनानां निर्माणं तथा च आयात प्रक्रिया प्रसाधन नियम 20/20 इत्यस्य प्रावधानैः नियन्त्रिता भवति। CDSCO इत्यनेन दृढीकृतं यत् प्रसाधनोत्पन्नेषु प्रतिबन्धित तत्त्वानाम् उपयोगः नामपत्रे भ्रामकोक्तिः संक्रमणोपचारार्थं सौन्दर्य प्रसाधनानां प्रयोगः तथा च सूचिका भेषज माध्यमेन एतेषाम् अनुप्रयोगः औषध तथा प्रसाधन अधिनियमन नियमानां गंभीरं उल्लङ्घनं मन्यते, यस्य कृते दण्डविधानं निश्चितं वर्तते। संस्कृतवार्ता

प्रेम तपस्या फिल्म के गीत से शुरुआत कर रहे हैं। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत।

स्काई फोर्स फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विशाल मिश्रा की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अगला गीत नादानिया फिल्म से है। सचेत टंडन, असीस कौर और सचिन जिगर ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लेकिन फिल्म का गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, शब्द रचना गुलजार की और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
3: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और
3: दूरदर्शन समाचार के साथ मैं फरहत नास। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
4: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक

0: प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुवन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेक और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे। आपकी फरमाइश का समय है 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित उल्हास कसालकर का ख्याल गायन, राग होगा यमन कल्याण। शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में सुनेंगे अरुणा सोम कुमार से की गई भेंटवार्ता, पोषण का खजाना, मिलेट्स या श्री अन्न। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। गांधी चर्चा का समय है 9:15। जिले की चिट्ठी सुनवाएंगे 10 बजे। 10:05 पर महिला संसार में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर सुनेंगे पंडित साजन मिश्र का ख्याल गायन, राग है विलास खानी तोड़ी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आपकी फरमाइश का समय रहेगा 12 बजे, दोपहर 2:30 और रात्रि 10 बजे। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत दिन में 12:30 पर सुनिए पंचतंत्र धारावाहिक की 9वीं कड़ी। छतरपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में हम आपको सुनवाएंगे 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां हमारे छतरपुर केंद्र की होंगी। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है शाम 6 बजे। कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। खेल जगत में 9:30 पर कल हम आपको सुनवाएंगे देवेंद्र खुराना की वार्ता, अंडर-18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026। दस बजकर 30 पर राग रजनी में सुनिए राग यमन में पंडित साजन मिश्र का ख्याल गायन। कल शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण रहेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे। भारत को मिली 40 अरब डॉलर निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार। 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यह 5 दिवसीय यात्रा भारत के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें करीब 40 अरब डॉलर के नए निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी वीरभूमि पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि राजीव गांधी का दूरदर्शी नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण पार्टी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा चुकी है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में पशुपालन, स्कूल शिक्षा, परिवहन विभाग, जनजातीय कार्य और सहकारिता विभाग की एक एक कर समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर यादव ने कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के पहले चरण में 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। बोर्ड में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीआईआई, फिक्की जैसे प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। बीते 14 मई को देवास के टोककला इलाके में हुए इस भीषण ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा के पोस्टर का आज विमोचन किया। ये यात्रा 25 मई से प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बताते हुए लोगों से जल स्रोतों की रक्षा में आगे आने की अपील की है।
3: जल संरक्षण को लेकर के जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलने वाला है। ऐसे में गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान करते हुए बड़ा अभियान लिया गया है। सभी संस्थाओं को जोड़कर सभी पंचायत, सभी नगरीय निकाय हर स्थान पर जल गंगा संवर्धन का बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस सबसे जुड़े हुए अभियान के लिए आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि वो सब जुड़े।
0: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण और बिग कैट संरक्षण पर विचार विमर्श के साथ ही भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंप्यूटर ड्रॉ के जरिए इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर

यात्रा के लिए 1000 यात्रियों का चयन किया है। ये यात्री जून से अगस्त के बीच लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते 20 जत्थों में रवाना होंगे और हर जत्थे में 50 यात्री होंगे। नई दिल्ली में आज 11वीं ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की जरूरत पर जोर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने ई सिगरेट तस्करों पर बड़ा शिकंजा कसा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पकड़ी गई हैं, जिनकी कीमत 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये सारा माल चीन से चोरी छिपे मंगवाया गया था। भारत में साल 2019 से ही ई सिगरेट और इस तरह के सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन उत्पादों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन दिनों बालाघाट की सुनीता सिहोरे की खूब चर्चा है। उनके घर में 70 तरह के देशी बीजों का अनोखा खजाना है, जो उन्होंने खुद जमा किया है। आजीविका मिशन की बीज सखी सुनीता ये बीज किसानों को मुफ्त देती हैं और ये बीज कम पानी कम खाद में भी अच्छी पैदावार देते हैं। सुनीता जैसी महिलाओं की बदौलत रासायनिक खेती की आंधी में खो चुके देसी बीज एक बार फिर खेतों में लौट रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में 454 बीज सखियां और 29 जिलों में 99 बीज बैंक तैयार हो चुके हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। IPL में अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। खजुराहो में 47.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है, जबकि राजधानी भोपाल में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पर्दे और ग्रीन नेट लगाए गए हैं। वहीं सतना, रीवा और टीकमगढ़ समेत 6 जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर लोगों को मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर और अनूपपुर में आज जनगणना 2027 कार्य के प्रचार प्रसार के लिए जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में नाव एवं मोटरबोट में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर रोक के साथ कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। सागर नगर निगम ने CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 98.32 वेटेज स्कोर प्राप्त कर प्रदेश की 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सीहोर जिला अस्पताल में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम सुपोषण की ओर अभियान के तहत बच्चों को पोषण टोकरियां बांटी गईं। झाबुआ खनिज विभाग के अमले ने जिले में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से खनिज ले जा रहे 5 वाहनों को जब्त किया है। छिंदवाड़ा वन वृत्त में लक्ष्य का 50% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण पूरा हो चुका है और शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसोना और टीला में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे। भारत को मिली $40 अरब निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार। 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सगे भैया और बहन का गीता बहन और साथ ही बैठी हैं आप संग बतियावे की नाने मीनाक्षी बहन। तो बहन भी हमारी राम राम।
1: और बहन आपके लाने भी हमारी राम राम। और बहन आप कैसी हो?
0: बस बढ़िया है, देखो गर्मी के तेवर तो आप देख ही रही हैं।
1: और का बहन सही कह रही है,
0: कस के गर्मी पड़ रही है कि कछु पूछो नहीं।
1: और का तो गर्मी में बहन देखो अपना बचाव अपने लाने करने हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: ज्यादा धूप में नहीं निकलने हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी पियत रहे हैं भैया। और ज्यादातर अपन तो जही कहेंगे कि जैसे मठा है और आम को पन्ना है,
0: शिकंजी
1: है, तो जे पेय जल ज्यादातर अपने भैया बहन पियत रहे।
0: और जो बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी के समय में घर से जब भी निकले कुछ खा पी के निकले, नहीं है तो खाली पेट जल्दी लू लग जाते हैं।
1: और का बहन,
0: और जरा समय अपने शरीर से जब पसीना निकला है तो अपने शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है।
1: और
0: सो नेक देर पे आप पानी पीते रहे, अगर आपको प्यास नहीं भी लगे
1: तो भी
0: पानी पीना चाहिए। और देखो एक साल के जो मोड़ा मोड़ी हैं बिने भी आप एक दो चम्मच तो पानी पिवाते
1: रहे, सही कह रहे हैं,
0: क्योंकि वो तो अपन मुझसे मांगेंगे नहीं
1: और
0: अपन और उनको ही बिने
1: पिलाना है, सही
0: तो
1: कह रहे हैं।
0: गर्मी के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपन और उनको बांसो खाना नहीं खाना चाहिए। हल्को सुपाच्य संतुलित भोजन करें, तलो भाव मसाले वालों खाना नहीं खाना चाहिए। और जितने हो सके तरल पदार्थ पिए, जैसे दही आपने बताओ है, मठा है, पना है। और अगर कछु भी नहीं मिले भैया तो साफ स्वच्छ पानी तो अपने पास होता ही है,
1: तो बता अपन पी ही सकते हैं।
0: और जब अपन घर से निकले सफर के लाने या बाजार जाएं तो भी अपने सींगे अपने पीवे को पानी जरूर
1: ले जाए। और का आपने देखो बहन, सिर के लाने ढक के रखने चाहिए, अपन बाहर निकल रहे हैं तो तौलिया है, गमछा है, बस बांध के निकलने चाहिए। नंगे सिर अपने लाने बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए, काहे के धूप बहुत तेज पड़ रही है बहन, तो अपने भैया नखो बस का है लू लग सकत है, अपने भैया बीमार पड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपन देख ही रहे, देखो भैया मौसम कोनो भी हो, काम काज के लाने तो घर से निकलना ही पड़ता है।
1: और
0: तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो अपन ये बातों को जरूर ध्यान रखें। और देखो मोड़ा मोड़ी इनके स्कूल इनकी छुट्टी भी चल रही है,
1: और का बहन
0: तो वो आपको तंग भी करेंगे घर में बैठ के, तो बिने घर से बाहर खेलवे के लाने नहीं भेजें।
1: और
0: बल्कि घर में ही बिने कछु ऐसे काम काज छोटे छोटे बता रहे हैं, खेल खेल में सीख जाएंगे।
1: और
0: दूसरी बात, घर बैठे खेल जो होते हैं वे इनसे खेलवे के लाने कहें, बाहर नहीं भेजें बिने।
1: और
0: देखो जे समय सबसे जरूरी है, एक बात और ध्यान रखनी है कि पानी की जे समय में जैसे जैसे गर्मी बढ़ जा रही है भूजल स्तर जो है कम हो जा रहा है,
1: तो हमें पानी की बचत करना है।
0: बिल्कुल पानी की एक एक बूंद को अपन को बचाना है। कैसे कि बहन आप सभी जानते हैं अपन की, देखो जल है तो कल है और जल ही जीवन है।
1: सही कह रही बहन,
0: जल के बिना अपन ये जीव जगत जो है अधूरो है, और जल के बिना तो अपन जीवन की कल्पना भी
1: नहीं कर सकते। सही कह रही,
0: सगा जीव जंतु के लिए सब है, जीव जगत के लाने पानी बहुत ही जरूरी है।
1: और
0: अपन बहन जे भी जानते हैं कि पानी को कोनो दूसरो विकल्प
1: नहीं है,
0: बना लें कछु कर लें।
1: और का बहन सही कह रही,
0: तो कुल मिला के अपन और उनको पानी की बचत हर हाल में करनी है। भाई किसान भैया जो हैं वो खेती बाड़ी तो देखो बिना पानी के होती नहीं है।
1: और का
0: तो पानी
1: ऐसी विधियों को उपयोग करें जिनसे कम पानी लगे, बस का है पूरी फसल में अपने भैया को पानी मिल जाए, और पानी भी उतना ना लगे, पानी भी कम लगे और फसल में भी लग जाए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखो आजकल तो खेती किसानी में अपन देख रहे कि सिंचाई की विधियां आ गई हैं, जिनमें कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा रकबे को अपन सिंचाई कर सकते हैं और फसल को भी हरा भरा करके अपन उत्पादन ले सकते
1: ले सकते हैं।
0: और जो अपनी बहने हैं वो अपनी घर गृहस्थी के काम काज में पानी की बचत कर सकते हैं, जैसे अपने खाना बनाते हैं
1: और का
0: या साग भाजी धोते हैं, तो उनको पानी जो है वो फैलाए नहीं बल्कि
1: पेड़ पौधन में
0: दे दे।
1: और का बहन,
0: तो वो पानी सदुपयोग हो जाएगा।
1: और का
0: पीवे के लाने अगर पानी की जरूरत अपन को आधा गिलास है तो अपन पूरा उभर के नहीं ले,
1: उतना ही पानी जितना पीने है उतना ही अपन
0: नहाने के लाने भी अपन को पानी की बचत करनी है। भाई किसान भैया तो नेक में मोटर चला देते
1: हैं,
0: पानी बिखरत है, तो हर जगह पे अपन और उनको पानी जो है बचत करके चलना है। अपन लोग का है कि कोनो नल टूटो भाव है, लीक कर रहा है, चाहे अपने घर को हो, घर के आसपास को हो, तो वह तुरंत दुरुस्त करा लें।
1: और
0: अगर आप नहीं कर सकते कोनो सरकारी जगह पे लगो है वहाँ पानी बिखरो, तो संबंधित विभाग को सूचित तो अपन कर ही सकते हैं कि भैया बेकार जा रहा है पानी। देखो अपन देखते हैं कि देख के मुलक दुख भी होते हैं, एक तपती दोपहरिया में पाए इतने जो भैया हैं बहने हैं छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी हैं पानी के लाने काम का छोड़ के लंबी लंबी कतार में लग के और एक दो बर्तन पानी भर के लाते हैं, मुलक दुखत है कैसे कि जोन के घर में पानी आ रहा है वो बाकी कदर नहीं कर रहा है। अब इनसे पूछो कि पानी का क्या मोल है, एक दूर से लेके आ रहा है।
1: सही कह रहे हैं।
0: और हर जगह जो पानी मिल रहा है वो भी जरूरी नहीं है कि पीवे के लाने हो।
1: और
0: बात को भी ध्यान रखना है कि दूषित पानी पीवे से पेट संबंधी मुलक सी बीमारियां हो जाते हैं। तो जो बात को भी ध्यान रखना है कि पानी साफ सुथरो देखभाल के लिए
1: और कम है
0: और जल को संरक्षण करें, खूब पेड़ पौधा लगाएं
1: और
0: संरक्षित करें, कैसे कि तभी तो हरियाली होगी खुशहाली होगी
1: और
0: पानी को मोल समझें, कैसे कि जल है तो
1: सुकल है। सही कह रही
0: देखो बहन, अपन ने जो तो बात करी पानी के बारे
1: पानी
0: में
1: के और का
0: अब जई तरीके से अपन दूसरा भी महत्वपूर्ण मुद्दों है वो ये है कि परिवार कल्याण की जो आधुनिक धारणा अवधारणा बन चुकी है बाकी बारे में
1: और का
0: कैसे कि अपन देख रहे हैं कि जो परिवार है बाप पहले अपन पहले की बात करें तो संयुक्त परिवार होता थे
1: और का
0: दो तीन पीढ़ी के लोग एक
1: सिंगे रहता थे और
0: मिलजुल के बच्चन का लालन पालन होता था
1: और
0: काम धंधो भी एक हतो
1: और
0: महंगाई इतेक
1: नहीं आती,
0: मतलब एक कमाता तो सगा
1: परिवार खाता तो
0: अब स्थिति दूसरी हो गई
1: और का बहन
0: चार घर में सदस्य हैं तो चार ही कमा रहे हैं, कहा कि महंगाई थे कि पूर्ति नहीं पड़ रही है। तो आज के युग में परिवार को सीमित रखना मुलक
1: जरूरी है और
0: पर सीमित रखने को मतलब सिर्फ इतने का नहीं है कि भाई मुड़ा मुड़ी एक या दो
1: और का बहन,
0: उसका मतलब ये भी है कि बिना अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले
1: शिक्षा मिले और
0: संस्कार मिले पोषण मिले
1: और का बहन
0: और इनकी जो जरूरतें हैं इनको अपन पूरी कर सकें
1: और का बहन। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के लाने इनको स्वास्थ्य है इनकी शिक्षा है सुख समृद्धि को अपने लाने ध्यान भी रखना पड़ता है। कहें कि बहन आधुनिक समय में परिवार कल्याण को महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी अवधारणा बन गई है।
0: बिल्कुल सही,
1: जैसे कि बहन छोटे परिवार सुखी परिवार कम सदस्य वालों परिवार आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से भी अधिक मजबूत होते हैं। कहे के भैया माता पिता जो बच्चन को स्वास्थ्य जो अपनी गर्भवती महिलाएं होते हैं वो बच्चन को उचित पोषण टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सोई होते हैं। कहे के बहन परिवार नियोजन बच्चन के लाने उचित अंतर रखना और परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार संतान संख्या तय करना होते हैं। कहे के बहन शिक्षा और जागरूकता परिवार को सभी सदस्यों को शिक्षा देना और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना बहुत ही जरूरी।
0: बिल्कुल सही कह रही भैया कि जब मोड़ा मोड़ी इनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी अच्छे लालन पालन नहीं होगा
1: और का बहन
0: तो फिर कछु मतलब नहीं
1: मतलब
0: ना अपन को अच्छे संस्कार देने अच्छी शिक्षा दीक्षा पोषण देने हैं इनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं
1: देने
0: भविष्य को संवारना है
1: और का बहन
0: तो ध्यान तो देना पड़ेगा।
1: सही कह रही
0: तो अपन को जो बात को ध्यान रखना है कि परिवार को सीमित तो रखना ही है
1: और
0: सिंगे वाक जो उद्देश्य है उसको भी
1: पूरा करना है। सही
0: तभी अपन देखो अपन छोटो सो एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर परिवार में पांच छह मोड़ा मोड़ी हैं
1: और
0: कछु चीज आता है तो बट जाते हैं।
1: सही कह रही है,
0: पांच चीजें आई तो
1: नेक बट गई।
0: अब वही एक दो मोड़ा मोड़ी होंगे तो इनको अच्छी तरीके से अपन
1: खिला पिला सकेंगे पढ़ा लिखा सकेंगे।
0: और अपन पांच मोड़ा मोड़ी इनमें देखने पड़ेगा कौन को जूते चप्पल चाहिए स्कूल के लाने
1: और
0: वस्तु चाहिए
1: और
0: तो ऐसे छोटी छोटी जरूरतें जो होते हैं इनको पूरा करना बड़े परिवार में
1: मुश्किल हो जाते हैं
0: और अपन देखभाल भी नहीं कर पाते।
1: और
0: परिवार छोटो होगा तो अपन मोड़ा मोड़ी की हर बात को ध्यान
1: देंगे
0: सुनेंगे
1: और
0: स्कूल गए कि नहीं गए का पढ़ो का
1: लिखो सही बात
0: मगर परिवार बड़ो है तो कौन कौन पे ध्यान देंगे
1: सही।
0: तो अब जो है परिवार की अवधारणा बदल चुकी
1: एका
0: की परिवार है संयुक्त तो परिवार नहीं है। तो अब अपन को एक तो करना ही पड़ेगा कि अपने परिवार की खुशहाली के लाने परिवार सीमित रखत है बाकी उद्देश्य को पूरा करने में अपन सहयोग
1: देंगे। सही
0: और देखो ये बहन मीनाक्षी की बात करत अब समय हो रहा है चौपाल कार्यक्रम से विदा ले तो लेते हैं अपन विदा सगे भैया बहनन का जय गीता बहन
1: और मनीषा बहन की राम
0: राम जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा
1: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सगे भैया बहन का आज एक बार फिर से गीता बहन और
5: मीनाक्षी बहन की राम राम।
4: देखो मीनाक्षी बहन, अपन ने सब इसे राम राम तो कर ली है, अब अपन तनिक बात कर रहे थे भैया बहन से राष्ट्रीय बांस मिशन की।
5: और का बहन, सही कह रही है।
4: बांस को अपने जीवन में बहुत ही महत्व
5: है। और का
4: बांस के बने उत्पाद जैसे की डलिया, टोकरी, चटाई, छप्पर, अगरबत्ती, मुलक सी ऐसी चीजें हैं जो बांस से बनाते हैं। बांस से वाद्य यंत्र भी बनाते हैं, और बांस अपने किसान भैया बहन की आजीविका को महत्वपूर्ण साधन है।
5: और का बहन, बांस मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जाको उद्देश्य देश में बांस की खेती को बढ़ावा देनो, किसान भैयन की आय को बढ़ानो, बांस उद्योग को विकास करना, और जा योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित करो गो है।
4: बिल्कुल सही
5: कह के बहन, बांस की खेती को प्रोत्साहन देनो, किसान भैयन की आय में वृद्धि करनो, और बांस आधारित उद्योगन को विकास करनो, पर्यावरण संरक्षण में हरियाली को बनाव रखना है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखो बांस जो है खेतन की मेड़न पे भी किसान भैया लगाते हैं और ये बांस बहुत ही तेजी के सिंगे बढ़त भी है।
5: और का बहन,
4: और पता है बहन, दुनिया में 80% बांस के जंगल एशिया में है, और भारत जो है दुनिया के सबसे समृद्ध बांस उत्पादन वालों देशों में
5: आते हैं। और का बहन,
4: बांस की अगर अपन वैज्ञानिक तरीका से खेती करवे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन को उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण बढ़ रहा है। वायुमंडल की गुणवत्ता में सुधार भी जैसे आ रहा है।
5: सही कह रही हैं आप।
4: और राज्य के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक बांस के जंगल हैं।
5: और का बहन,
4: बांस हमारे जीवन और संस्कृति को अभिन्न अंग है, जाको इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान में, कला और संगीत में भी करो जाते हैं।
5: और
4: जो एक ऐसा अनोखो पेड़ है बहन, जो हमारे दैनिक जीवन में समाभव है।
5: और का बहन,
4: जनजातीय लोगन के लाने तो और वनवासियों के लाने तो ये आदर्श वाक्य है कि रोजी रोटी के लाने बांस और जिंदगी के लाने बांस। भैरव, बांस को पेड़ लगभग 4 से 5 साल में बड़ा हो जाते हैं।
5: और
4: जबकि ये ठोस लकड़ी वाला जो पेड़ होते हैं ना, वो बड़ा होने में बहुत टाइम लग जाते हैं।
5: और का बहन,
4: बांस को पेड़ भारी वर्षा या कम वर्षा दो ही स्थिति में जलवायु में जो है पनप सकते हैं।
5: और का बहन, सही,
4: राष्ट्रीय बांस मिशन जो आपने बताया कि केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में शुरू करोगा है।
5: और का बहन,
4: और बांस एक ऐसी वनस्पति है जिसके मूलक से उपयोग है, जिसे लगभग 1500 उपयोग जो है अपन रिकॉर्ड इसके दर्ज कराएगा।
5: और का बहन,
4: तो भैया अपन और को जो राष्ट्रीय बांस मिशन को उद्देश्य है कि बाजारों से किसान भैया बहन को जोड़ो जाए, किसान उत्पादकों को उगाए गए बांस के लाने एक तैयार बाजार मिल जाए और घरेलू उद्योग को उचित माल आपूर्ति में वृद्धि हो।
5: और का बहन, सही कह रही,
4: तो अपन और को भी ये बात को ध्यान रखना है कि बांस से जब इतने उत्पाद अपन बना सकते हैं है ना भैरो, अपने देश में हो रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव से कच्चे माल के रूप में भी बांस को महत्वपूर्ण, मतलब केवल कुटीर उद्योग में बढ़ रहा है बल्कि छोटे जो उद्योग हैं बड़े उद्योग में भी जाको महत्व है।
5: और का,
4: आप भी राष्ट्रीय बांस मिशन को हिस्सों बन के बांस उत्पादन को बढ़ा के अपनी आमदनी को बढ़ावे की सींगे जाके देश को सार्थक बनावे में अपना सहयोग
5: दे सकते हैं। और का बहन, सही कह रही हैं आप।
4: और देखो मीनाक्षी बहन, अब अपन तनिक बात कर रहे थे भैया बहनों से भेड़ बकरी पालवे की।
5: और का बहन,
4: ऐसे की अपन सभी जानते हैं कि जो कई किसान भैया है वो खेती बाड़ी करवे की सींगे से व्यवसाय
5: करते हैं। और का बहन, सही कह रही हैं।
4: कछु भैया बहन फूलन की व्यवसाय खेती कर रहे थे, तो कछु मधुमक्खी पालन, मछली पालन कर रहे थे, मुर्गी पालन कर रहे थे,
5: और का,
4: और कछु भैया ऐसे भी हैं जो
5: भेड़ बकरी पालन कर रहे। सही कह रहे हैं बहन। तो बहन हम
4: जब

0: अपन भेड़ बकरी पालन कर रहे थे तो अपन और उनको मुलक सी बातन को ध्यान
1: ध्यान
0: देखना
1: रखना
0: पड़ता है।
1: होता है
0: कहा से कि अगर बिना जानकारी के बिना तैयारी के अगर भेड़ बकरी पाल लेंगे
1: और
0: तो अपन को
1: कभी
0: नुकसान की संभावना ज्यादा
1: ज्यादा
0: होगी।
1: होगी और
0: और
1: का
0: भेड़ बकरी पालने से पहले अपन को जो बात को ध्यान रखना हो कि कौन सी नस्ल के अपन को जो भेड़ बकरी खरीदने हैं
1: और
0: तो वैसे
1: का
0: तो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी लेने जाएं तो स्वस्थ बकरी भेड़ जो है अपन लाएं और इनके रहवे की व्यवस्था अपन पहले से तय कर
1: पहले से
0: लें,
1: तय कर लें और
0: जाके
1: का
0: बाद में मुलक सी बीमारियां भी हो जाते
1: और
0: हैं,
1: का बहन
0: है
1: सही
0: ना।
1: कह रही
0: कौन सी बीमारी कब लग जाए कैसे बात को निदान हो जवारे में भी किसान भैया मैंने उनको पता होना
1: पता होना
0: चाहिए।
1: चाहिए। सही कह रही बहन। तो बहन जई बापे हम अपने भैयन को जी भेंट वार्ता बस सुनवाऊ चाहूत
0: हाँ
1: है।
0: सुनवा दो।
1: तो बहन हम अपने भैयन को सुनवाऊत है जी भेंट वार्ता जाको विषय है भेड़ बकरियों में होवे वाली बीमारियों और रोकथाम। जाके वार्ताकार हैं डॉक्टर चंदन सिंह बाथम और जिससे बता रहे हैं अपने भैया श्री मोहन सिंह यादव। तो
0: तो
1: बहन
0: चलो
1: सुनाते हैं जी भेंट
0: हाँ
1: वार्ता।
0: भैया
2: किसान भाई देखो करे तो अपन खेती और खेती के संगे संगे अपन जो सहायक धंधे हैं जैसे बकरी पालन है मुर्गी पालन है पशु पालन है मधुमक्खी पालन है और भी जैसे बेलात व्यवसाय हैं जो अगर अपन करें वो किसान भैया करत भी हैं तो जिसे कहे कि अपने खेती के अलावा अतिरिक्त आमदनी पहलाने मिल जाते हैं और अतिरिक्त आमदनी से कहे कि अपने जो है पे परिवार को खेती किसानी में आगे बढ़वे में उन्नति में जो है बहुत मदद मिलत है। तो भाई किसान भैया के लाने ये काम करना चाहिए कह सके जी खेती से जुड़े हुए सहायक धंधे हैं और जी को अपन जो है आसानी से कर भी सकते हैं और किसान भैया पाए जो है कर भी रहे हैं। तो जी में अपन अगर बात करें भेड़ बकरियन की तो भेड़ और बकरियन को पालन जो है किसान भैया कर रहे हैं और जी में कहे कि सबसे अच्छी बात जी है कि जी अपन भेड़ बकरियां अगर अपन पालें तो जी कहे कि कम लागत में अधिक उत्पादन देवे वाली जो है एक नस्ल है और जैसे जो है अपन बिला ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अपन जो है इसमें ले सकते हैं वो किसान भी ले रहे हैं। तो इसमें काहे कि एक समय जैसे पशुपालन अपन कर रहे हैं सब भैया कर रहे हैं तो जी में कबू कबू का होते कि रोग बीमारी ऐसी आ जाओ थे जी में भाई किसान भैया ही को समझ नहीं पाओत हैं और जी के कारण उनके लाने बिला नुकसान उठाना पड़त है। तो आज अपन जो है ऐसे ही विषय पे जी को विषय है भेड़ बकरियों की प्रमुख बीमारियां एवं रोकथाम। इस विषय पे जो है अपने बीच में बैठे हुए हैं डॉक्टर चंदन सिंह बाथम जी जौन पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी कोलारस हैं। तो बाथम जी आपको हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
3: नमस्कार किसान भाइयों।
2: तो अपाई किसान भैयान के लाने अपनों जो जानने हैं कि भेड़ बकरियन में कौन कौन सी बीमारी होते हैं और कैसे होते हैं जी।
3: किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भेड़ और बकरियाँ जो हैं यह हमारी कहना चाहें तो अपन इसको गरीब की गाय भी कहते हैं। यह किसानों की अपनी आय बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है। सामान्यतः यह देखा गया है कि बकरी पालन में बहुत कम खर्च आता है और यदि बकरियों को कोई रोग लग जाए तो फिर यह मुसीबत का कारण भी बन सकती हैं। तो आप लोग जैसा कि बकरियों को पालते हैं भेड़ों को पालते हैं उनका उचित रख रखाव करते हैं उनके रहने की व्यवस्था करते हैं उनके चारे की व्यवस्था करते हैं उनको चराने ले जाते हैं लेकिन मौसम बदलते रहते हैं और मौसम के बदलने के अनुसार इनमें बीमारियों का भी प्रकोप आता रहता है। अलग अलग मौसम की अलग अलग मौसमी बीमारियाँ भी होती हैं जो हम बकरियों में सामान्यतः देखते हैं और यदि हम इनसे थोड़ा सा बचाव कर लें तो हमारे जो बकरियाँ हैं भेड़ें हैं यह सुरक्षित रहेंगी और इस यदि एक बार कोई ग्रसित हो जाता है बीमारी से तो पूरा जो अपना फ्लॉक है मतलब जो पूरा कहना चाहिए जो बकरियों का अपना हर्ड है समूह है वो पूरा उससे संक्रमित हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि समय समय पर इन बीमारियों के बचाव के अपने को तरीके पता होना चाहिए। जैसे ही मौसम बदलता है परिवर्तन होता है तो हम इन बकरियों को अच्छे से उपचार कर सकते हैं।
2: जैसे अपन देख रहे हैं कि अब जैसे सर्दी से अपन गर्मी को मौसम आ रहा तो जो मौसम बदल रहा है
3: जी
2: तो जिस समय में भी कछु बीमारी भेड़ बकरियों में हो
3: हाँ जैसे कि अब आज देखने में आ रहा है जैसे मौसम परिवर्तन हुआ तो बकरियों में नाक और खांसी की बीमारी हमें बहुत देखने को मिल रही है जिसको कि अपन लोग निमोनिया भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो लक्षण है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो ठंड से कपकपी लगती है नाक से तरल पदार्थ का रिसाव होता है मुंह खोलकर बकरियां सांस लेती हैं चारा दाना पानी कम कर देती हैं खांसी बुखार इनको होता रहता है। यदि ऐसे कोई लक्षण आपको दिखें तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है इसका उपचार है इनकी देखभाल करना चाहिए। अगर जल्दी जल्दी भी सांस ले रही है तो वो एक निमोनिया से मिलता जुलता लक्षण है जिसको कि हम सामान्य भाषा में निमोनिया भी कहते हैं और आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये यदि हो जाए तो इसमें कुछ नहीं करना हमको एक एंटीबायोटिक कोई सा भी अपन डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ले लें और साथ में एंटी स्टामिनिक या एंटी स्टामिनिक जो दवाइयां होती हैं वो ले लें। साथ ही बाजार में आयुर्वेदिक चूर्ण आता है जिसको कि केफलोन चूर्ण के नाम से जानते हैं, वो 100 ग्राम का पैकेट आता है। इसमें अपन 10 से 15 ग्राम एक बकरी को गुड़ के साथ मिला के दे सकते हैं। जैसे हमने अगर उसका उपचार 2 दिन भी कर दिया तो बकरी सामान्यतः ठीक हो जाती है। यह आजकल चूंकि मौसम परिवर्तन है तो सबसे ज्यादा बीमारी हमें इसी की देखने को मिल रही है।
2: तो जब मैं जैसे डॉक्टर साहब बीमारी भाई बीमारी को उपचार बताओ आपने, और जैसे अपनी बकरियां होते हैं जो काहे झुंड में रहे थे, तो झुंड में रहे तो भाई भी अपन इनको इलाज कराते हैं कि झुंड से अलग करके ना अपने
3: इनको इलाज। सबसे पहले तो अपने को यही करना है कि जो भी बकरी हमें बीमार दिखे तो हमें उसको उस पूरे झुंड से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये नहीं देख पाते कि ये संक्रामक बीमारी है कि एकल बीमारी। संक्रामक से मतलब ये है कि यदि वो कोई संक्रमित से आई है ये बीमारी, हो सकता है किसी से वायरस या बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी हुई हो, तो अगर वो एक को हो गई तो पूरे समूह को बीमार कर देगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने चेतावनी के अनुसार, जैसे हम अपन लोग भी बताते हैं, उसको सबसे पहले झुंड से अलग कर देना चाहिए और उसको रखरखाव भी अलग, उसको चरने ना भेजना चाहिए जंगल में। जैसे चरने आप ले जाते हैं ना, तो उसको जंगल में चरने के लिए भी नहीं ले जाना चाहिए। दूसरी बीमारी का जो नंबर आया वो है अफरा, जो आजकल अपन देख रहे हैं कि बकरियों में पेट का बायां हिस्सा फूल जाता है और दबाने पर जैसे ढोल जैसी आवाज आती है, तो ये अफारा तो आजकल बहुत होती है। पेट दर्द होने लगता है, पेट पर अगर अपन हाथ लगाते हैं तो बकरियां चिल्लाने लगती हैं, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, कई कई बार इस बीमारी से मृत्यु तक हो जाती है यदि हमने समय पर ध्यान नहीं दिया। तो यह है कि इस बीमारी में पशु के पेट में गैस बनने लगती है, जो उसका रूमन है उसमें गैस बनने लगती है और इसको वो हार्ट पर जाकर असर करती है, तो सांस लेने में इसको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसका लक्षण यह है कि वो तुरंत चारा पानी बंद कर देगी, वो बकरियां खाने पीने के लिए चारा दाना पानी बंद कर देंगी, एक जगह खड़ी हो जाएंगी, सुस्त खड़ी रहेंगी और बार बार चिल्लाएंगी, तो ये समझ लो। और जैसे ही अपन उसके जो पेट फूला हुआ रहता है उसको अगर अपन थपथपाएंगे तो ढोल जैसी आवाज आएगी, तो आप समझ जाओ कि इसको अफारा हो गया है। अब चूंकि जैसे ही अफारा होता है तो हमारे पास जो घर में सबसे पहला उपचार जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हींग को घोल के पानी में तुरंत पिला देना चाहिए, जिससे कि उसकी गैस की समस्या पूर्ण हो जाए। साथ ही हमें उसको चारा दाना पानी कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक कि उसका पेट साफ ना हो जाए, और 1 चम्मच सोडा बाई कार्ब में टिम्पोल पाउडर आता है हिमालय 32 का, ये पाउडर उसको गुड़ में मिला के उसको खिला देना चाहिए, जिससे कि उसकी गैस बनने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाए। साथ ही 1 चम्मच तारपीन का तेल और 150 से 200 ml मीठा तेल या सरसों का तेल जो अपन साधारण भाषा में बोलते हैं, ये उसको पिला देना चाहिए, इससे भी उसकी समस्या ये दूर हो जाती है।
2: इसके बाद तो अफारा की बात, इसके बाद बात आओ था और भी जैसे कोई रोग होते हैं
3: आजकल के परिवेश में, जैसे अभी जो समय चल रहा है बीमारियां बहुत फैल रही हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खूब सारे होंठों पे छाले पड़ जाते हैं, बकरियां मुंह की श्लेष्मा जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो भी लाल हो जाती है, और कहना चाहिए तो कई बार इससे पशु लंगड़ाता रहता है, पैरों में भी घाव हो जाते हैं, तो ऑर्फ करके एक बीमारी होती है, ये लक्षण उसमें भी होते हैं, और एक खुरपका मुखपका रोग होता है उसमें भी ये लक्षण मिलते हैं, दोनों मिलते जुलते लक्षण दोनों बीमारियों के। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें दिन में अगर चाहें तो अपन उन बकरियों को अलग कर दें हर्ड से, और दिन में 2 बार लाल दवाई जो पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसके घोल से उसके घावों को अपन को धोना है, और जैसे ही वो घाव अपन धोएंगे बाद लोरेक्सेन एक क्रीम आती है या उसका स्प्रे भी आता है, उस स्प्रे को आप करोगे तो उससे बहुत जल्दी 2 या 3 दिन में ये आराम मिल जाता है।
2: जैसे अपन घाव धोएंगे डिटॉल का उपयोग,
3: हाँ डिटॉल का भी उपयोग कर सकते हैं, लाल दवाई है, और कहना चाहिए कि फिनाइल बहुत अच्छा साधन है, ये कीड़े नहीं पड़ते हैं इससे भी, इसका भी उपयोग कर सकते हैं,
2: जैसे आराम पशुओं के लाने मिल जाते
3: हैं। बिल्कुल, बहुत जल्दी आराम मिलता है इन चीजों से। अब कुछ विषाणु जनित बीमारियां भी होती हैं, इनमें खुरपका मुंहपका रोग जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इनमें क्या रहता है कि मुंह और पैरों में छाले हो जाते हैं जो घाव में बदल जाते हैं, छाले जैसे धीरे धीरे होते हैं तो पशु लंगड़ाने लगता है, मुंह से लार आने लगती है, उसका खार बढ़ जाता है और चाप खड़ा हो जाएगा एक जगह, लंगड़ा के चलने लगेगा, और ऐसे पशुओं को तुरंत अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी, अगर ये एक पशु में आ गई तो दूसरे पशु में तुरंत फैलेगी, और जो खुर के बीच में फटे हुए रहते हैं जिन्हें जहां 2 हिस्सों में बटते हैं, उस जगह अगर आप उनको खोल के देखोगे तो वहां आपको उस बीमारी के लक्षण अलग से ही दिख जाएंगे, लालपन रहेगा उसमें, देखा जाएगा कि पशु हाथ ही नहीं लगाने देगा पहली बार, तो ऐसी जगह पशु को तुरंत अलग कर देना चाहिए, और जीवाणुनाशक और दर्दनाशक इंजेक्शन भी लगा देना चाहिए जिससे कि उसको आराम मिल जाए।
2: तो जैसे खुरपका मुंहपका हो जाते हैं तो रोकथाम के लाने पर
3: रोकथाम के लिए तो इसका टीकाकरण है, सबसे वर्ष में 2 बार इसका टीकाकरण होता है, 6 6 माह माह के अंतराल से आप टीकाकरण करवा लें तो ये रोग बिल्कुल नहीं आएगा आपकी बकरियों में। यदि किसी कारण से नहीं करवा पाते हैं तो फिर उपचार ही इसका एकमात्र साधन है।
2: जैसे ही समय चल रहा हो तो जिस समय में अब टीकाकरण लग सका था,
3: अभी लग तो सकता है लेकिन वर्तमान में अभी हमारे पास टीका द्रव उपलब्ध नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही ये टीकाकरण कार्यक्रम पूर्ण किया है प्रदेश शासन के आदेश अनुसार,
2: जिन्हें टीका लगवाना होगा उनके लाने
3: उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जैसे ही अब ये गर्मियां खत्म होंगी तो मई या जून में फिर दोबारा चालू होगा ये प्रोग्राम, उसमें आप लगवा सकते हैं।
2: तो जैसे आगे जो है ये समस्या जो है
3: हमेशा के लिए
2: की समस्या खत्म हो जाएगी।
3: हाँ, अब एक बीमारी और मैं बताऊंगा आपको किसान भाइयों, जैसे पीपीआर जिसमें बोलते हैं बकरी प्लेग हिंदी में अपन बोलेंगे, तो जिसमें मतलब 80% बकरियों की मृत्यु हो जाती है इस बीमारी में का। और सबसे ज्यादा मतलब जो घना रूप देखने को मिला है कि एक ये भी संक्रामक बीमारी है, एक बकरी में हो गई तो दूसरे में तुरंत फैलती है। और इसका इसमें ये है कि इसमें सबसे पहले तो बकरी को बहुत तेज बुखार रहता है, इसका शारीरिक तापमान इतना बढ़ जाता है 105 से 106 डिग्री बुखार मिलेगा यदि आप इसको नापेंगे तो। और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, काले रंग के दस्त होते हैं, आंख व नाक से पानी आता रहता है, बकरी एक जगह खड़ी हो जाएगी, चलने फिरने से बिल्कुल लाचार हो जाएगी, सांस लेने में परेशानी होगी। और इस बीमारी में जो छोटे बच्चे होते हैं 4 से 12 माह के वो ज्यादा ग्रसित होते हैं। इस बीमारी का जो उपचार है वह भी टीकाकरण ही है। यदि हमने समय रहते इस प्रतिवर्ष इसका टीकाकरण होता है, पशुपालन विभाग के सहयोग से टीका लगवा लें तो ये बीमारी आपके पशुओं में बकरियों में भेड़ों में दिक्कतें नहीं आएगी। आप तो सबसे पहले टीकाकरण यदि आ गई है तो फिर इसका उपचार ही किसी पशु चिकित्सक से परामर्श अनुसार ले सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब आपने जो है भाई किसान भैया ने जो है ये सभी जानकारी बताई के जैसे नाक खांस नाक में से अगर नाक आने लगे, खांसी उठने लगे, अफरा हो जाए, मुंह में छाल हो जाए, तो ये सब कारण का है कि इनकी दवाइयों पर रोकथाम दवा से हो जाते हैं। लेकिन जैसे खुरपका मुंह पका इनको उपाय जो है टीकाकरण है, और जो वर्ष में 2 बार होते हैं, एक तो सर्दी इनके पहले और दूसरा बरसात के पहले, तो किसान भैया इनके लाना जो पशुपालक भैया आए तो उनके लाना जरूर लगवा लेना चाहिए। और कोई ऐसी बीमारी जो हो या भाई किसान भैया इनके लाना है पशु उनकी जो जरूर बताओ।
3: इनमें जो अभी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे एंट्रोटॉक्सीमिया, एक बीमारी और मैं बताऊंगा आपको जिसमें कि इसको किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे पेट में बहुत तीव्र दर्द होता है, पशु जमीन पर लेट जाता है और चलने फिरने में उसको असमानता रहती है, मतलब जैसे जो नॉर्मल चाल रहती है उसकी पशु कभी उस चाल से नहीं चलता, अफारा भी हो जाता, काले रंग के दस्त लगते हैं इस बीमारी में भी। तो ये क्या है, ये बीमारी बहुत पाई जाती है, अपने क्षेत्र में भी मिलती है ये। इस बीमारी में किसान भाइयों मैं यही कहूंगा कि इस बीमारी का भी टीका हमेशा उपलब्ध रहता है, पशुपालन विभाग के सहयोग से आप अपनी सभी बकरियों में टीकाकरण करवाएं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी बकरियां इस वजह से मर रही हैं जो लक्षण मैंने अभी आपको बताए, तो फिर उनका पशु चिकित्सक के सहयोग से तुरंत उपचार लेना चाहिए और उपचार करवाना चाहिए।
2: तो किसान भैया देखो डॉक्टर साहब ने जो है अपने बिलात जानकारी अपने दी है कि बकरियों में जो है कौन सी बीमारी होते हैं, इनके लक्षण कौन से होते हैं और इनकी रोकथाम कैसे हो सकते हैं ना। तो डॉक्टर साहब जैसे कोई और अगर अपन से कोई बात छूट रही हो तो भाभी अपन किसान भैया
3: किसान भाइयों जैसा कि अभी ये तो मुख्य बीमारी बता दी, अब ये परजीवी जनित रोग जो कि हमें वर्ष भर बकरियों में भेड़ों में मिलते हैं, जिनके लिए आप भी हमसे संपर्क करते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अंतः परजीवी के कारण होते हैं, कुछ होते हैं ब्रह्म परजीवी। तो अंतः परजीवी यानी कि उनके शरीर के अंदर जो परजीवी रहते हैं वह परजीवी भेड़ बकरियों को ना तो उनको खाने पीने के और प्रजनन के और अन्य जिस उपयोग से हमने रखे हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि अंतःजीवी परजीवी है जो उसके पेट के कारण बीमारी है, ऐसे लक्षण यदि मिले बकरियों में जैसे कि दस्त लग रहे हैं, खून की कमी हो गई, वजन खा तो खूब रहे हैं वजन हो गया, तो ऐसे बकरियों में अपन अल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल की जो गोलियां आती हैं वो खिलवा दें वर्ष में 2 बार, इससे भी हम उन पर रोक लग जाती है।
2: तो डॉक्टर साहब आपने जो है पर किसान भैया के लाने भेड़ बकरी ने हो वाली प्रमुख जो बीमारी हैं जो परजीवी से होते हैं, वायरस से होते हैं और टीकाकरण के से मतलब रुका बटा जाते हैं, तो ऐसी सभी बीमारी के बारे में पाई किसान भैया के लाने आपने बिलात अच्छी जानकारी दी, जिसे पाई किसान भैया उनको पालेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये सभी के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: भैरव अभी अपन सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय था भेड़ बकरियों में होने वाली बीमारियां और रोकथाम। वार्ताकार भैया थे डॉक्टर चंदन सिंह बाथम और इनसे बात कर रहे थे भैया मोहन सिंह यादव। तो देखो भैया अपन ने बातचीत सुनी और जान लो कि का तरीका से अपन और उनको भेड़ बकरियाँ का ध्यान रखना चाहिए, बीमारियों से बचाना चाहिए, का तरीका से अपन भी इनसे लाभ ले सकते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बातचीत का लाभ अपन सुनने वाले भैया जरूर लेंगे
1: और कब है।
0: और देखो मीनाक्षी बहन जय के बाद अब हम सोच रहे हैं कि मनोरंजन के लाने अपने भैया बहन इनको एक लोकगीत सुनवा दें
1: और कब है। सही कह रही,
0: सुना थे मदन मोहन ब्रजवासी को गाओ जो लोकगीत।
4: या के छोटे छोटे हाथरी छोटा सौ कन्हैया, या के छोटे छोटे हाथरी छोटा

0: सालन तक एक ही फसल अपने खेत में उगाते हैं,
1: और का
0: जिसे एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, वहां मौजूद पोषक तत्व की गुणवत्ता में कमी आ जाते हैं,
1: और
0: दूसरों जल धारण क्षमता भी कम हो जाते हैं। सिंगी भगवान न करे यदि कोनो प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोनो कीट व्याधि अपनी फसल को लग जाए तो फसल कमजोर हो जाए तो किसान भाई बहन के लाने तो बड़ी मुश्किल पड़े है,
1: और का
0: बिन के लाने खासकर जो कि कर्जा लेके खेती करते हैं। तो जरूरी है कि अपने भैया बहन फसल विविधीकरण को अपनाएं। जैसे फसल जोखिम से बच जाते हैं, सिंगी एक ही फसल पे निर्भरता भी खत्म हो जाते हैं। फसल विविधीकरण को मतलब है पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली एक ही फसल के बजाय खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगानो,
1: और
0: जिससे फसल जोखिम तो कम होता ही है, सिंगी मिट्टी की सेहत में सुधार होते हैं और मुनाफा भी बढ़ जाता है। और जैसे कहा होता है कि अपन और उन पे यदि कोई आदि व्याधि आ भी गई
1: और
0: तो वो कमजोर जो फसल भई है वो दूसरी फसल बाकी
1: पूर्ति कर देते हैं। सही कह
0: रहे हैं। तो अपन और को अपने खेतन में फसल विविधीकरण को भी
1: जरूर अपनाना चाहिए।
0: जाके फायदे ही फायदे हैं और नुकसान तो है ही नहीं है।
1: सही कह रहे हैं।
0: किसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपन ने गहरी जड़न वाली फसल लगाई एक बार तो उतनी जड़ वाली लगा ले, है ना। यही तरीका से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ रही है, जल धारण क्षमता
1: बढ़ रही है,
0: रोग व्याधि कम लग रही है, वायु का संचार अच्छा हो रहा है, तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फसल विविधीकरण आज के दौर में
1: बहुत ही जरूरी है। और कब है?
0: और देखो मीनाक्षी बहन, अब धीरे धीरे बेरा हो जा रही है,
1: चलवे
0: अपन किसान भैया बहन से जे कार्यक्रम से आगे ले लें
1: और
0: चलवे की।
1: सही कह रहे हैं
0: भैया बहन का जय गीता बहन और
1: मनीषा बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को

0: देखो अपन ने जे लोकगीत भी सुन लो है और देखो बेरा हो जा रही चलवे की, पर चलवे से पहले कछु बात करते हैं फसल विविधीकरण की।
1: और का
0: कैसे के कछु भैया बहन जो है साल

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: सुर्खियों में
4: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची प्रिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा और उसके प्रमुख निष्कर्षों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के प्रत्येक चरण की विस्तृत कवरेज आकाशवाणी के संवाददाताओं ने की। कार्यक्रम में हम उनकी विशेष रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौटे। 5 देशों की इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात से की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन

0: सैयद अल नाहयान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित तथा निर्बाध परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया। दुबई में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इस यात्रा को संयुक्त अरब अमीरात से कवर भी किया। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
1: इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया गया। एनर्जी के मोर्चे पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्व में यूएई का हिस्सा बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल्स तक पहुंचा जाएगा। ये इंडिया की एनर्जी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अडनोक के बीच एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट भी संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करता है। डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पेश रकम हुई। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज शामिल है। ये वो एरियाज हैं जो आज के दौर में दोनों देशों के लिए तेजी से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनता जा रहा है। निवेश के मोर्चे पर यूएई ने इंडिया में 5 अरब US डॉलर्स की कमिटमेंट का ऐलान किया। 3 अरब डॉलर्स इमरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से आरबीएल बैंक में आएंगे। दोनों देशों ने गुजरात की वडिनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एग्रीमेंट किया और साथ ही मैरिटाइम सेक्टर के लिए एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। ये दोनों कदम इंडिया में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और देश की इंडस्ट्रियल सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयां देंगे। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में नेदरलैंड्स पहुंचे। ये उनकी नेदरलैंड की दूसरी यात्रा थी। नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के विकास में साथ मिलकर काम करेंगी। इस यात्रा के दौरान कई अन्य अहम समझौते और घोषणाएं भी हुई, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इन उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुश्रुत शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।
2: व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 27.8 अरब डॉलर का रहा। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। हाल में संपन्न भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद इससे व्यापक भारत यूरोपीय संघ संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है। नीदरलैंड्स में यूरोप की एक बड़ी भारतीय मूल की आबादी रहती है। यहाँ 90,000 से अधिक NRI, PIO और 2,00,000 से अधिक सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, जो डच समाज में पूरी तरह से एकीकृत हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत नीदरलैंड साझेदारी का जीवंत सेतु हैं। सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता 4थी पीढ़ी से बढ़ाकर 6थी पीढ़ी तक करने के निर्णय का प्रवासी समुदाय ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया। नीदरलैंड्स यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने अफसलीट डाइक बांध का दौरा किया। यह दौरा कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अफसलीट डाइक के 90 से अधिक वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए नीदरलैंड्स इस परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अफसलीट डाइक 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है, जिसने डच जल रक्षा तथा भूमि सुधार को नई परिभाषा दी है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। ये नर्मदा, साबरमती, माही और ढाढ़ जैसी प्रमुख नदियों के मीठे पानी को रोकेगा और एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करेगा। ये परियोजना कृषि और औद्योगिक विकास के लिए बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों का सुधार करेगी। इस यात्रा के परिणामों को 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है। इनमें शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रूपरेखा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए दुर्लभ खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर डस्ट सहयोग, कृषि और कौशल विकास के अंतर्गत त्रिपुरा में पुष्प कृषि और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान के लिए नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्रोताओं, नीदरलैंड्स की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी स्वीडन यात्रा भारत स्वीडन संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। श्रोताओं, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो दोनों देशों के बीच गहरे लोकतांत्रिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
3: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए स्वीडन में थी। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
4: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी ये यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों ने संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 की शुरुआत की और AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ओस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रोताओं, नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की जनता और वहाँ के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों और दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास तथा स्नेह का सम्मान है। आइए सुनते हैं श्रोताओं, आकाशवाणी संवाददाता संगीता गोलपोड़े की विशेष रिपोर्ट, जो इस यात्रा को कवर करने के लिए नॉर्वे में थी।
5: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक रणनीतिक आयाम प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में भारत की विशाल क्षमता और नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक ब्लॉक के देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञता रखते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता के अनुसार सहयोग करने पर चर्चा की गई। नेताओं ने भारत के सागरमाला और महासागर कार्यक्रमों के माध्यम से सस्टेनेबल शिपिंग पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और नॉर्डिक देशों ने हाल ही में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर आर्थिक सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगीता वोड़बोले की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
0: पांच देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 20 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक वार्ता की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प लिया और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
3: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की पांच देशों की ये यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और यूएई के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
6: सुर्खियों में
7: यह कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। मुद्दत फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी।

और आइए आप सुनते हैं जावाज फिल्म का गीत। मनहर और साधना सरगम ने इस गीत को गाया है, इंदीवर ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संगीत फिल्म का गीत। अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजें, संतोष आनंद की शब्द रचना और संगीतकार आनंद मिलिंद।

लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म का गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का गीत, कुमार सानू की आवाज, जावेद अख्तर के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

0: कुमार सानू के गाए 1942 ए लव स्टोरी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि शिव राग तेलंग,
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
6: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
4: अमेरिका एंड इंडिया,
5: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
2: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खतरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीराजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीनामेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासिर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। LPG की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हजार टन LPG तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए LPG की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासर मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज्यादा खतरे वाले मुल्कों, जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफर किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निकलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त रबते में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अक्वामी जाब्तों पर अमल आवरी और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जाँच और अवामी सेहत के इकदाम के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है, जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशवीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्त उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नजर भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफर पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तकम करने और लाखों की किसानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वखार की एक अलामत है।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक्द होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नजर मुलतवी कर दिया गया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक्द करने पर गौर खोज किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकत दारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के अवाम और वहां की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरतेहाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB George ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाज़ाराई में आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सलामती काउंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदा हरीश प्रवर्तने ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारे। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर मंतखब होने पर रंजीत कुमार दास को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनाब दास का कानून साजी का वसी तजर्बा और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतजल्जल अज़्म असेंबली के वक़ार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए शदीद से शदीद तरीन गर्म लहर की सूरत हाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरत हाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा पंजाब राजस्थान तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल और तेलंगाना में कल से अख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 2 से 3 दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि सब हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान IMD ने अंडमान निकोबार जजायर केरलम माहे लक्षद्वीप उत्तराखंड साहिल कर्नाटक कोंकण गोवा और शिमाल मशरकी खत्ते में आइंदा 2 दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसी तर मशरकी बहरे अरब और मशरक वस्ता के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इकतसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज करेगी। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और एलपीजी की खातिर खास सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। त्रिशूल फिल्म के गीत से शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यसुदास ने इस गीत को गाया है। गीत लिखा है साहिर ने और संगीतकार हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है प्रेम बंधन।

ये गीत जानी दुश्मन फिल्म से है, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, वर्मा मलिक की शब्द रचना और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म अमर अकबर एंथोनी, किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। कार्यक्रम का पहला गीत स्वर्ग से सुंदर फिल्म के लिए फरमाइश की है। ग्राम महसवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोड़कर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले, आरती जौंधले। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं स्वर्ग से सुंदर फिल्म का गीत किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। कटारा हिल्स भोपाल से योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेम बाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, ललिता बाई भारतीय, बावड़िया कला भोपाल से फरमाइश की है। डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता श्याम नानी ने, और साथ में ही इस गीत को सुनना चाहते हैं शाश्वत भारतीय और अमिता भारतीय, दुर्गा भारतीय, दिल्ली शहर मूरी गेट से इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

अगली फरमाइश धर्मात्मा फिल्म के गीत के लिए आई है, किशोर कुमार की आवाज़, इंदीवर की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हरदिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, मुज्तबा खान, रऊफ शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइशी पत्र भेजा है टीडी मल्होत्रा, रितेक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। और कालका से फरमाइश की है शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का।

पुणे से फरमाइश करते हैं प्रियंका, पंकज, आर्य, चरुण और वरुण, बाबा साहेब बड़ोदे और चंद्रप्रभा बड़ोदे, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक। इंदौर से फरमाइश की है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आप सभी ने फरमाइश की है बागी फिल्म के गीत की। इसे गाया है अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवाबगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, पटेल नगर मलोट पंजाब से फरमाइश की है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। अगली फरमाइश है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। आप सभी ने फरमाइश की है लम्हे फिल्म के गीत की। लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की शब्द रचना और शिवहरि का संगीत।

अब आज का आपके फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए पंडित उल्हास काशालकर का ख्याल गायन, राग है यमन का।

0: अभी आपने पंडित उल्हास कसालकर का ख्याल गायन सुना। राग था यमन कल्याण। आवाज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने जांच दल को 25 जून तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। परिवार ने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को छिपाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जाँच कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। दिल्ली में 1 जून को होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी बाद में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा। वहां कल का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।